0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखी आपने? एग्जैक्टली लाइक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो मून से नजर आती है रिलेशनशिप्स में, स्पेशली फ्रेंडशिप्स में. द स्पोकन वर्जन ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज आई लव यू ब्रो. जब एक लड़की आपको ये कह देना, दैट मींस शी हैज फुल ऑन फ्लैट आउट फ्रेंड जोन यू, और अब इसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में. मेरे कजन के साथ ऐसा हुआ. बेचारा, ही वॉज टोटली वाइबिंग विद दिस गर्ल, और उसे लगा कि उनकी वाइब चेक ऑन पॉइंट है. टिल एक पार्टी में शी पुट हर आर्म अराउंड हिम, ही थॉट भाई फुल एक्शन सीन है, एंड देन शी सेड I love you bro, तो इतना क्यूट है यार, I can't get over you dude. And he called me, ठीक है, साइड से पार्टी में, कि इसने मुझे अभी अभी ब्रो कहा है, इसका क्या मतलब है? And I was like, भाई इसका मतलब ये है कि इसकी बेस्टी पे लाइन मार दे, इसकी कजन पे लाइन मार दे, क्योंकि ये अब जिंदगी भर तेरी बेस्ट फ्रेंड बनने वाली है. एंड दैट इज इट, शी हैज कॉल्ड यू ब्रो. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और फ्रेंड जोन उसने बना दिया है तेरे और उसके बीच में, इसे तू पार नहीं कर सकता. पुअर थिंग, ही फेल्ट काइंड ऑफ बैड, बट दो दिन के बाद ही रिकवर्ड फ्रॉम इट. और अगर आप भी ऐसे फ्रेंड जोनिंग से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FP, लेट्स टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROC.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
0: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
1: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
7: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
6: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
8: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे ये कहा कि यार तू अच्छा खाना बना, आई रियली लाइक वुमेन हु कुक वेल. तो आपने उसे एक दिन खाना बना के इतना नमक डाला कि उसने कहा मुझे माफ कर दे, इसके बाद कभी खाना नहीं बनाना. लेकिन ये सब आपने जानबूझ के किया था. ऐसी गंदी गंदी कन्फेशंस किसके साथ शेयर करोगे?
0: द सीक्रेट बॉक्स.
1: द राइट आंसर टू दैट इज मेरे साथ शेयर करोगे. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू. मेरे साथ अभी लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: Hello, Roshi. How are you?
1: I am very good, my darling. How are you?
2: I'm also doing good.
1: Good.
2: I have a confession.
1: Haan, exactly. You've been a naughty girl. Kya confession hai aapka?
2: So, me, my boyfriend and uska best friend. Okay, haan. We three went on a trip. Haan. And the trip was fun, obviously. You know, daru sharu sab thi. And by the end of the day, you know, my boyfriend was like totally sloshed. He passed out. And so basically, उसके best friend के ऊपर मेरे को crush था काफी time से. But obviously he asked me out first, so that went into that direction. But he was all, you know, he was passed out. And me and his best friend, we made out. And the good or I don't know bad part about us, I don't even feel guilty about it. And you know, the other morning we all met also, and tab se awkward hi chal raha hai. We've been avoiding since that trip. Matlab ek dusre ko avoid kar rahe hai. But yeah, and deep down I feel ki what if, you know,
1: खराब लग रहा है किसी पता चल रहा है तो. बट मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ, वी कैन होप दैट दिस रोशिफिकेशन एक्चुअली होल्ड्स यू इन गुड स्टेड और आप कभी ना पकड़े जाओ, है ना. सो लेट मी जस्ट लाइक गिव यू अ क्विक रोशिफिकेशन. देयर यू गो,
3: यू've बीन रोशिफाइड.
1: और एक कहावत है ना कि व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस, वैसे ही इस ट्रिप पे जो भी हुआ इट जस्ट स्टेज इन द ट्रिप.
2: ओके, दैट्स अ ग्रेट रिलीफ. कुछ किसी को बोल के बाहर निकला कुछ,
1: है ना, बेटर लगता है ना. आई टोटली गेट दैट फीलिंग. तो आपने उसे फ्लश आउट कर दिया, अब जस्ट गो बैक टू योर रिलेशनशिप लाइक नथिंग एवर हैपेंड. और अगर बाद में ऐसा कुछ फिर से किया तो यू नो वेयर टू फाइंड मी, करेक्ट.
2: यस, थैंक यू रोशी.
1: यू आर मोस्ट वेलकम माय डार्लिंग. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी ऐसी कन्फेशन है, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. I'll be happy to talk to you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.
4: Uh-huh.

0: एजी द गैंगस्टर।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वैसे तो ज़माने भर की

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आपके पैसे ना जाने कहाँ खर्च हो जाते हैं, पैसे आपके कम हो रहे हैं या करियर में बहुत स्ट्रेस है या आपके रिलेशनशिप में भाई लड़ाई ज्यादा प्यार कम हो रहा है, तो थोड़ा टाइम ना अपने बाथरूम में स्पेंड करो या किचन में. यू नो आई एम सेइंग दैट राइट, क्योंकि वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में कोई भी ऐसा टैप है जो लीक कर रहा है या कहीं से पानी टप टप टप टप टप कर रहा है, उसका ये मतलब होता है कि आपके जो पैसे हैं वो ज्यादा जल्दी खर्च हो जाएंगे या रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज्यादा जल्दी खर्च हो रही है. और इसे ठीक करने का एक सिंपल सा तरीका है, अपने घर प्लम्बर को बुलाओ, वो जो लीकिंग नलका है आपका 480 साल पुराना, उसे ठीक कर दो एंड देखो कैसे हाउ योर फॉर्च्यून्स एंड योर लव लाइफ कम्प्लीटली गेट्स बैक ऑन ट्रैक. एक बार ऐसा हो जाए ना तो मुझे थैंक यू बोलने के लिए, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो फाइंड मी ऑन इंस्टा, फाइंड मी ऑन द ग्राम एंड व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। रोज जब मैं ये गाना सुनती हूँ, रोज मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करती हूँ कि भाई साहब, इससे बड़ा कचरा इन सर्कमफ्रेंस, इन डायमीटर, इन दिमागी हालत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। एंड दैट इज ट्रू एक्चुअली। पता है, मैं गार्बेज पे PhD कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इस तरह के गर्बाज को डेट किया है मासी जी। और अगर मेरी तरह जब भी कोई आपसे ऐसे कचरे गटर की बात करता है, आपके दिमाग में सिर्फ आपके एक्स बॉयफ्रेंड का चेहरा दिखाई देता है। जिधर देखूं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, लेट्स टॉक अबाउट इट। क्योंकि जिंदगी में बहुत ही कम ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरटेनिंग चीजें होती हैं, एंड टॉकिंग अबाउट योर एक्स इज वन ऑफ देम। सो हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो व्हाइल यू डू दैट, जानू मानू कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: लिस्नर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ਸੱਜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਦਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡ।

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपका शानदार खड़ूस बॉयफ्रेंड मानो एक न्यूक्लियर फिजिक्स का प्रोफेसर हो और आप मैं प्रेम की दीवानी हूं वाली करीना कपूर. इफ द टू ऑफ देम मीट तो किस तरह का झगड़ा होता होगा. आई विल टेल यू दैट. मेरे पिछले रिलेशनशिप में मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत शौक था. बेसिकली वो ग्रंपी था तो जब हम झगड़ा करते थे ना एकदम प्रोफेसर की तरह बैठकर ऐसे कहता था, रोशी दिस इज नॉट पॉसिबल, द वे दिस रिलेशनशिप इज वियरिंग ऑफ ट्रैक. और मैं उसे देख के पता क्या बोलती थी, मुझे बड़े मजे आते थे बिकॉज इट यूज टू इरिटेट हिम एवरी सिंगल टाइम. वो ऐसे लंबी थियोरी बांट रहा होता था मुझे और मैं उसे देख के कहती थी, मूर्ख बालक तुम्हें पता ही क्या है. एंड सीरियसली बताओ उसका दिमाग इतना पक जाता था ना कि एक पॉइंट के बाद वो उठ के चला जाता था और देन ही यूज टू फाइंड इट वेरी फनी. और फिर हम बड़ी जल्दी जल्दी मेकअप और मेकआउट कर लेते थे. तो अगर आप भी ऐसे मेरी तरह सीरियस हो ही नहीं सकते हो, लाइक You want to be as serious as a heart attack, लेकिन आपके अंदर इतनी सारी फन और बदतमीजी भरी हुई है, why don't you hit me up Insta पर या FB पर and let's get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, and who knows, if you send me your number, I might be nice to you and call you a मूर्ख बालक. On that note, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जब आपको एक ऐसे इंसान से मोहब्बत हो जाए जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, लेकिन आपने सपने देखे हैं ब्याह करने के इसी बंदे के साथ, तो क्या करोगे आप? सो माय बेस्टी, जिसके लिए एक ही रिलीजन है, विच इज कॉल्ड लव, उसे लव हो गया है विद हर मैरिड बॉस, एंड नाउ शी इज लाइक कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे, मैं 5, 6, 7, 8 साल बाद शादी कर लूंगी रोशी, मैं बस उससे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे प्यार करे. अब हमने उसे समझाया कि देखो बेटा, इस बंदे की ना सिर्फ शादी हो चुकी है, विच मीन्स ही हैज वन वाइफ, ही ऑल्सो हैज 2 चिल्ड्रन, इसका क्या करेंगे? शी इज लाइक, मैं छोटी माँ बनने के लिए तैयार हूँ. मुझे तो लगता है इस लड़की को हमें देवदास दिखानी नहीं चाहिए थी, और अब उसने देख लिया है, और अब उसे ऐसा लग रहा है कि 4 साल के बाद जनाब आएंगे, उसे कहेंगे कि हम एक शादी कर लेते हैं, मेरे बच्चों की तो छोटी माँ बन जाएगी, एंड वी विल ऑल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. अब इस गधी को कौन समझाएगा कि ऐसा नहीं होता है. लेकिन इफ यू हैव बीन इन लव विद अ मैरिड पर्सन बिफोर, अगर आप मुझे अपनी स्टोरी बताओ, शायद मैं ये स्टोरी उसके साथ शेयर कर सकती हूँ, एंड देन ड्रिल सम सेंस इनटू हर कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, एंड विद अ मैरिड पर्सन चांसेस आर यू विल ड्राउन. हाउएवर, आपकी स्टोरी का इंतजार मैं कर रही हूँ ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो व्हाइल यू फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आपका रिलेशनशिप बोरिंग है, रूटीन है, आई मीन देयर इज ऑल दैट लव बट द एक्साइटमेंट, द नॉटीनेस, द सॉसीनेस हैज गॉन आउट ऑफ योर रिलेशनशिप, जैसे कि मेरी ओल्डर कजिन एंड हर हस्बैंड, देन मे आई सजेस्ट समथिंग जो मैंने उसे सजेस्ट किया था एंड इट टोटली वर्क फॉर हर. जितने भी गर्म स्पाइसेस होते हैं ना, जिसे इंडिया में गर्म मसाला कहते हैं, जैसे कि सिनेमन, कार्डमम, आई मीन दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, इन सब वार्म स्पाइसेस को या तो एक इन्फ्यूजन बना के चाय बना लो और उसमें थोड़ा सा हनी डालकर पी लो, या फिर इसे अपनी नॉर्मल जिंजर चाय में डाल दो. ऑल दीज स्पाइसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू यू एक्चुअली फीलिंग नॉटियर एंड सैसियर दैन बिफोर, एंड दिस इज अ प्रूवन थिंग. ओके, मैं इसे खुद ट्राई करके देख चुकी हूँ, किताबों में पढ़ चुकी हूँ. इन छोटे से मसालों के फायदे अनलिमिटेड है. अपनी चाय में या इन्फ्यूजन में डालकर इसे ट्राई करो. ट्राई इट फॉर लाइक 3-4 डेज एवरी सिंगल डे, एंड देन पांचवें या छठे दिन यू विल रियलाइज दैट आपके बेडरूम में जितने भी लाइक लो डेसिबल के एप्स हो रहे थे, नाउ दे आर फुली बम्बास्टिक. एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, बिकॉज आई नो एवरी सिंगल टाइम आई लाइक टेल एनीवन टू ट्राई इट, दे हैव ऑलवेज कम बैक विद 100% सक्सेसफुल फीडबैक. मुझे थैंक यू बोलने के लिए यू कैन फाइंड मी इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोज, and I call myself your broshi for a reason. And honestly, spices or no spices, I always maintain just this one simple single thing: jiske paas love hai uske paas sab hai, and I love you loads.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे ये कहा कि यार तू अच्छा खाना बना, आई रियली लाइक वुमेन हु कुक वेल, तो आपने उसे एक दिन खाना बना के इतना नमक डाला कि उसने कहा मुझे माफ कर दे, इसके बाद कभी खाना नहीं बनाना, लेकिन ये सब आपने जानबूझ के किया था। ऐसी गंदी गंदी कन्फेशंस किसके साथ शेयर करोगे?
1: द सीक्रेट बॉक्स।
0: द राइट आंसर टू दैट इज मेरे साथ शेयर करोगे। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो हिट मी अप बेबी, आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। मेरे साथ अभी लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर। हाय मिस्ट्री कॉलर।
2: Hello Roshi, how are you?
0: I am very good my darling, how are you?
2: I'm also doing good.
0: Good
2: to go in confession.
0: Haan, exactly, you've been a naughty girl. Kya confession hai aapka?
2: So, me, my boyfriend and uska best friend, okay, haan. We three went on a trip. Haan. And the trip was fun, obviously, you know, daru sharu sab thi. And by the end of the day, you know, my boyfriend was like totally sloshed. He passed out. And so basically...

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर. मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर. सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर. इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: नमस्कार श्रोता साथियों, आपका स्वागत है मिर्ची पर लता फॉर एवर विद जीतूराज। इस बड़े ही विशिष्ट संस्करण में कोकिल कंठी स्वर कोकिला दीदी लता मंगेशकर की एक और वर्षगांठ है और उनके इस बर्थडे के मौके पर मिर्ची के प्लेटफॉर्म पर हम ये विशिष्ट संस्करण आपकी खदमत में लेकर आए हैं। इसमें अलग अलग अनुभव स्वानुभव हिंदुस्तानी सिनेमा की बातें और लता मंगेशकर की विशिष्ट बातें होंगी। पिछले कुछ सालों में जहां पर आरजे जीतूराज रेडियो के साथ संलग्न रहा, हिंदुस्तानी सिनेमा के कई कई लोगों के साथ साक्षात्कार करने के अवसर प्राप्त हुए हैं एंड इन्हीं के साथ कोकिल कंठी दीदी लता मंगेशकर के साथ भी कई बार साक्षात्कार हुए हैं। कई बार उनसे निजी तौर पर मुलाकातें हुई, कभी कभार मुंबई में एक बहुत प्रतिष्ठित सारे एशिया में जो सबसे बड़ा हॉल माना जाता है श्री षणमुखानंद हॉल, वहां पर उनसे बातचीत हुई थी। प्रभु कुंज जो दीदी लता मंगेशकर का घर है, वहां पर एक हाथ दो बार दीदी ने निमंत्रण दिया था और कुछ बातें फोन पर हुई हैं। मगर लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी ताकत है हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा में, जिन्होंने न सिर्फ कई कई भाषाओं को स्पर्श किया है, जो न जानते उन्हें बताएं कि उन्होंने एक आध अंग्रेजी गाना भी गाया है, इसे जीतूराज ने सुना है। मगर सिर्फ संगीत नहीं है लता, ये एक ऐसा साक्षात्कार है, लता एक ऐसा अनुभव है जो सिर्फ संगीत और गीत तक ही महदूद नहीं रहता। ये एक ऐसा विशाल काय देव तुल्य अनुभव है जिस अनुभव को स्पर्श करने के बाद हम में से कोई भी कुछ और पवित्र ही हो जाता है। बस ऐसे ही किसी ने लता मंगेशकर को संगीत सरस्वती नहीं ना कहा होगा, कोई कारण होगा। यानी संगीत सरस्वती के साथ के हमारे अनुभव, आपके अनुभव, ये सब मिलकर ये शो होगा जिसे हम मिर्ची पर लता फॉरएवर कह रहे हैं। अगर हम आपके विचारधारा के साथ नहीं मिले तो हमें साक्षात आपसे मुआफी मांगने का हक दें, अगर कोई ख्याल गलत पड़े तो मुआफी दें, मगर उस ख्याल के साथ रुके नहीं। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी दे रहे हैं आपको, आप अपने ख्याल, आपका कोई एक दीदी लता मंगेशकर का गाया गया हुआ पसंदीदा गाना होगा वो भी भेजें, आपका अगर कोई अनुभव है जहां आपका साक्षात्कार हुआ था दीदी लता मंगेशकर के साथ वो भी भेजें। हमारी इंस्टाग्राम पर आईडी है मिर्ची जीतूराज, MIRCHIJEETURAAJ। आए इस लता मंगेशकर के सुरों के पवित्र बहती हुई गंगा जमनी संस्कृति का अनुभव लें और आगे बढ़ें मिर्ची पर लता फॉरएवर विद जीतूराज। नमस्कार।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतूराज के साथ मिर्ची पर इट्स हॉट।

आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर इट्स हॉट सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर इट्स हॉट

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: मिर्ची पर लता फॉर एवर सुन रहे हैं आप। नमस्कार ए हिंदुस्तान, हमारे आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ है। लता मंगेशकर को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तेरे में से जो नहीं जानते उन्हें बताएं। जीतू राज, एक ऐसा मौका भी था जब जीतू राज लता मंगेशकर के तब मिला था जब हम लोग 98.3 मिर्ची के 10 साल पूर्ण कर चुके थे एंड षणमुखानंद हॉल नाम की एक जगह है मुंबई में जहां पर साफे के फूल जो महाराष्ट्र में बड़े प्रचलित है, जीतू राज को भी बड़े पसंद आते हैं, उन फूलों के पूरे ऐसे बिखराव में दीदी लता मंगेशकर लाल सोफे पर बैठी थी एंड मेरे को भीड़ भड़के के बीच में से जगह निकाल कर अंदर जाने का प्रयत्न करना था, जो मैंने किया एंड वहां पर जाकर दीदी लता मंगेशकर से बस दो ही सवाल पूछने का चांस मिला, एक सचिन तेंदुलकर के बारे में एंड दूसरा क्या, हाँ ये सुनिए ना टुकड़ा।
2: एंड अहोभाग्य जीतू राज के फाइनली मेरे को पाए लगू करने को मिल रहा है। दीदी लता मंगेशकर के, दीदी कैसी हैं आप?
3: बस मैं ठीक हूँ, आप लोगों की दुआ से।
2: सचिन तेंदुलकर आपको मम्मी कहते हैं, माँ हैं आप उनकी, कैसे लगता है?
3: बहुत अच्छा लगता है और बहुत पहले उन्होंने मुझे कहा है ये और अभी वो बात सब लोगों को मालूम हुई है क्योंकि मैंने ही बताई वो, और मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे इतना मानते हैं। वो एक हमारे भारत की शान है, इतना बड़ा वो प्लेयर है और इतना सज्जन लड़का है। कभी मैंने उनके मुंह से किसी की बुराई, कोई बुरा शब्द कभी नहीं सुना। एक दिन मैंने अचानक उनको एक जगह मिले वो, तो मैंने पूछा, किसी आदमी के लिए पूछा, मैंने कहा ये प्लेयर जो है ये आपके साथ कैसा बिहेव करता है, क्या है ये आदमी? प्लेयर नहीं था एक्चुअली, वो जो सिखाने आते है ना अपने यहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छे है, कभी कभी हो जाता है ऐसे तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कितना अच्छा उन्होंने उस बात को उलझ जाती बात वो सुलझाया, मतलब तो वो एक उस आदमी की शराफत का ये है कि वो कितना शरीफ है। और उनके पिताजी मेरे हृदयनाथ के दोस्त थे।
2: दीदी पुनः सादर चरण स्पर्श, एक मैसेज रेडियो मिर्चीला जर आपके तरफ से मिलेगा रेडियो मिर्ची मुंबई को।
3: मैं क्या कहूँ, आप इतने मतलब पॉपुलर है, आपका मैंने शो भी देखा रेडियो मिर्ची का और मुझे बहुत खुशी हुई और आपके 10 साल पूरे हो रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत भगवान करे और तरक्की करे आप और दुनिया सुने और आप हमेशा खुश रहे।
2: दीदी थैंक यू सो मच, तुम्हाला सादर चरण स्पर्श,
3: मी तुम्हाला नमस्कार करते आणि माझ्या शुभेच्छा तुम्हाला देते।
1: लता ये नाम नहीं है, लता ये अध्यात्म है, लता ये संगीत है, लता ये आराधना है। ये मिर्ची पर लता फॉरएवर सुन रहे हैं आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ। लता मंगेशकर के बर्थडे, उनके जन्म दिवस पर ये हमारी टीम मिर्ची ने बनवाया हुआ एक तोहफा है जो आपके लिए है, और वहां स्वर्ग में हमारी जो दीदी मंगेशकर बैठी हैं उन तक हमारा ये पैगाम भी पहुंचे। आप भी कोई एक पैगाम भेजें उनके नाम हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जो मिर्ची जीतू राज है, मिर्ची जीतू राज MIRCHIJEETURAAJ। ये बताना ना भूलिएगा कौन से शहर में सुन रहे हैं आप मिर्ची पर लता फॉर एवर विद जीतू राज। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। हमारे
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स
1: हॉट। लिस्नर ए मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Songs जो याद रहे forever. Legacy जो जिंदा रहे forever. Mirchi पर सुनिए Lata forever. Forever. Celebrating the melodious legacy of Lata Mangeshkar. Jitu Raj के साथ Mirchi पर. It's hot. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉर एवर चल रहा है, यानी कुछ ऐसे अनुभव आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के, जिसमें लता के साथ की कुछ बातें हैं, उनके साथ के कुछ अनुभव है। और आए आगे बढ़ते हैं। हम में से कई लोगों को शायद जानकर आश्चर्य होगा कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के आगे जब दीदी लता मंगेशकर ने एज ए चाइल्ड ये गुजारिश करी थी कि उसे गाना है या अभिनय करना है, तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ने कहा था थाम बाड़ा नको। एंड दीदी लता मंगेशकर की बातें एंड उनके संपूर्ण इतिहास के सागर मंथन को मंथित करके चंद मोतियों को चूक कर जीतू राज तेरे खदमत में पेश करने का प्रयत्न करेगा। एंड ऑफकोर्स ये अट्टहास होगा। अट्टहास ऐसे हिंदी शब्द को कहते हैं जो फेलियर होता है, प्रयत्न होता है सक्सेसफुल होने का, वो हो नहीं पाएगा जीतू राज, क्योंकि दीदी लता मंगेशकर की बातों को बताते हुए कौन कामयाब हो पाएगा। ये दो तीन शब्द नहीं है, संगीत का संपूर्ण पुराण है। एंड वो सेलिंग किस तरह से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पहले नहीं चाहते थे, दिन अचानक जब कोई एक नाटक था जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ने बिठाया था, एंड उस नाटक का एक पात्र शायद जब नाटक का मंचन होने वाला था तब नहीं आया था, एंड दीदी लता मंगेशकर उन सारे रिहर्सल्स में हुआ करती, तो उन्होंने वो सारे जो नाटक संवाद थे वो पठित कर लिए थे। एंड जब वो पात्र नहीं आया था, उस पात्र के कपड़े पहनकर मेकअप पहनकर दीदी लता मंगेशकर रंगमंच पर चढ़ गई थी ताकि नाटक का मंचन रुक न पाए। एंड अचानक से विंग में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर बाबा आए, एंड उन्होंने देखा कि ये क्या है। वो देखने के बाद फिर वो आश्चर्यचकित हो गए और उसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी शिष्या बना दिया, जो वैसे तो थी अब हो गई ऑफिशियली। एंड देन एज दे से संगीत के इतिहास में वो संगीत सरस्वती जन्म ले रही थी जिन्हें आगे चलकर तू और मैं मिलकर कहते पद्म विभूषित भारत रत्न। गायन कोकिला संगीत सरस्वती, प्रभु कुंज की माता, भारतीय संगीत की महालक्ष्मी दीदी लता मंगेशकर, जिनके बारे में जीतू राज जितने भी शब्दों का उपयोग करे शब्द कम पड़ जाएंगे, भाषाएं अपूर्ण रह जाएंगी, संगीत की विधाएं रुक जाएंगी, सांसें थम जाएंगी, लता मंगेशकर ये नाम चलता रहेगा। मिर्ची पर लता फॉर एवर उनके वर्षगांठ पर एक और प्रयत्न के उनके यादों के कई कई जो फूल है उनमें से एक हाथ दो फूल जो हमें याद है वो आपकी खदमत में पेश कर रहे हैं। आपका ये रेडियो साथी जीतू राज, आप कौन से शहर में सुन रहे हैं और आपके क्या विचार है उससे हमें मालामाल करना न भूलें। हमारे इंस्टाग्राम पर आपके नाम के साथ हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है मिर्ची जीतू राज MIRCHIJEETURAAJ। नमस्कार, जय हिंद।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। It's hot.
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ, जहां पर भाव है, स्पर्श है, उम्मीद है कि वो एक गायिका जिनको हम सुर सरस्वती कहते हैं, उनके जन्म दिवस पर उनको अपनी तरह से उनके ही इंटरव्यू, उन्हीं के विचारों का तोहफा दें। आगे बढ़ते हैं। हमारी टीम मिर्ची ने लता मंगेशकर के नाम हैशटैग मिर्ची सलाम भेजते हुए ये जो खास शो तैयार किया है, इसमें अभी जीतूराज अपनी टीम के साथ मिलकर जो करने जा रहा है, ये अगर हम लोग न करें तो इस शो में बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। वो क्या है सुने।
2: हेलो
1: दीदी।
2: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार जीतूराज रेडियो मिर्ची मधु।
2: हाँ नमस्कार, बोला कैसे आप?
1: सादर चरण स्पर्श सगळ्यात पहिले।
2: कैसे हैं आप?
1: धमाल धमाल। आपसे बात करते हैं तो कुछ और पवित्र और पावरफुल हो जाते हैं। दशहरा बद्दल काहीतरी सांगा ना। दशहरा नॉर्मली दीदी कैसे घर पे मनाती है?
2: नहीं, हमारे घर पे तो दीदी सिंपल मनाते हैं। आपको मालूम है वो आपट्याचे पान अपन म्हणतो ना।
1: हाँ।
2: सोना दिया जाता है, घर में पूजा की जाती है और सब नए कपड़े वगैरह लाते हैं और सबको मिलते हैं। आज सब मिलना होता है ना लोगों का
1: जी,
2: लोग आके मिलते हैं।
1: एक्चुअली मला एक प्रश्न विचारायची पण हिम्मत होत नाही है, तरी विचार तो। सुना है कि दीदी के जो दो फेवरेट चीजें हैं उनमें एक तो क्रिकेट है और एक है हीरे और जवाहर खरीदना, तो दशहरे पे हीरे वगैरह खरीदने की प्रथा है, दीदी इस बार कुछ कर रही है ना?
2: देखिए मेरी माँ थी तो हमारे यहाँ दशहरे पे सोना खरीदा जाता था, मतलब सोना थोड़ा सा, ऐसे नहीं कोई 10 ग्राम ऐसे सोना, क्योंकि माँ कहती थी कि आज सोना खरीदना चाहिए,
1: शुभ
2: होता है। हम लोग तो सोना खरीदते थे और मुझे हीरे वगैरह पसंद है, पर वो मैं बार बार खरीदती नहीं हूँ, कभी कभी कभी कभार खरीदती।
1: चलो ठीक है। हाँ। दीदी रेडियो मिर्ची पर जीतू राज का एक सपना है, आपकी इजाजत हो तो बताऊँ?
2: हाँ बताइए।
1: अब पुनः हृदयनाथ मंगेशकर ने फिर से कंपोज करना चाहिए, कुछ बंदिशें होनी चाहिए लेकिन के जैसी, एंड दीदी लता मंगेशकर ने फिर से पंडित हृदयनाथ की कुछ बंदिशें गानी चाहिए।
2: जरूर गाऊंगी मैं, जरूर उसको, आपका ये मैसेज उस तक पहुंच जाएगा।
1: दीदी फिर से आपको हम सब की तरफ से दशहरे की शुभकामनाएं, यानी सादर चरण स्पर्श।
2: नमस्कार
1: दीदी। कोकिल कंठी सुर सरस्वती, संगीत की महारानी और स्वयं में विजय पताका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर कहीं नहीं जाती, लता मंगेशकर जैसे इतिहास, लता मंगेशकर जैसे पुराण, लता मंगेशकर जैसे आध्यात्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और इसलिए वो हैं तो जीतूराज है, वो है तो रेडियो है, वो है तो संगीत है, वो है तो भारत है। दीदी लता मंगेशकर के लिए टीम मिर्ची की तरफ से मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ये शो करना हर किसी को अच्छा लगेगा, ये शो सुनते हुए तेरे में से भी हर किसी को अच्छा लगा होगा, बट बिलीव मी हर कोई जो सुन रहा है, शायद जीतूराज अगर ये बात कहे तो चलेगा, कि हम में से कोई भी न चाहता होगा कि इस तरह का शो हमको करना पड़े, बट ये शो करते हुए हमारी टीम को ये रियलाइज हुआ कि ये शो करते हुए भी जो दीदी लता मंगेशकर के साथ की बातचीत है या जो दीदी लता मंगेशकर की जिंदगी की कुछ कहानियां तेरे साथ हम लोगों ने बांटी है, उनको बांटते हुए ऐसे लगा कि लता मंगेशकर फिर से हम लोगों को सबको एक अलग तरह की इंस्पिरेशन दे रही है, एक अलग तरह की ब्लेसिंग दे रही है, एंड इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ लता भी हमारे साथ रहेंगी, आप भी रहेंगे। ये मिर्ची पर लता फॉरएवर सुन रहे हैं आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ, लता मंगेशकर के बर्थडे, उनके जन्म दिवस पर ये हमारी टीम मिर्ची ने बनवाया हुआ एक तोहफा है जो आपके लिए है, और वहां स्वर्ग में हमारी जो दीदी मंगेशकर बैठी हैं उन तक हमारा ये पैगाम भी पहुंचे। आप भी कोई एक पैगाम भेजें उनके नाम हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जो मिर्ची जीतूराज है, मिर्ची जीतूराज MIRCHIJEETURAAJ। ये बताना ना भूलिएगा कौन से शहर में सुन रहे हैं आप मिर्ची पर लता फॉरएवर विजीतुराज। नमस्कार, जय हिंद, ए हिंदुस्तान हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर, फॉरएवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतूराज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉरएवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर. इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉर एवर ये सुन रहे हैं। इस शो में आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ हैं। ये हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म का एक विशिष्ट प्रयत्न है लता की जन्म दिवस की जो सुंदर आभा है उसे अपने शब्दों, अपने वाक्यों और लता मंगेशकर के साथ की हुई बातचीत के कुछ टुकड़ों को आप पर न्योछावर करते हुए करने का। मिर्ची पर लता फॉरएवर आरजे जीतू राज आपके साथ है। नमस्कार। और एक अनुभव बताना चाहता हूं। जब लता मंगेशकर से सबसे पहली बार मिला था, वो मिलना नहीं था वास्तविक, लता मंगेशकर के साथ मिलने का प्रयत्न मात्र था और वो प्रयत्न ही रह गया। उसके बाद लता मंगेशकर से किस तरह से मिला वो बाद में बताऊंगा। इसमें ये सुने कि जब पहली बार जब मिला था तो कोई एक बहुत बड़ा मुंबई में उत्सव था और उस उत्सव में तो वो जमाना तब था जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह नहीं था, एक्स नहीं था, स्नैपचैट नहीं थे, और हम जो रेडियो पर शोज करने वाले हैं या जो पत्रकार हैं या जो टेलीविजन पर शोज करते हैं, हम सब जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे अमिताभ बच्चन कहें, शाहरुख खान कहें, सलमान कहें, सनी देओल कहें, शुभा मुद्गल कहें, जगजीत सिंह कहें, लता मंगेशकर, इनसे बहुत निजी, आशा भोसले कहें, इनसे बड़ा निजी राबता हुआ करता, निजी राबता यानी संबंध फोन लाइन पर हुआ करता था। तो लता मंगेशकर से मिलने के लिए उस समय जो पीआर मैनेजर्स होते थे वो पैपराजी से थोड़े अलग होते थे, पीआर मैनेजर से भी बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप हुआ करता। तो उस समय कोई एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें लता मंगेशकर से मिलने के लिए हमें आमंत्रित किया गया था, हम वहां पहुंचे भी थे, मगर उस समय टेलीविजन बहुत बड़ा था और हम रेडियो पर बस अपनी उंगलियों को स्पर्श कर रहे थे कि अभी रेडियो बड़ा होगा। सबसे पहली मुलाकात की बात कर रहा हूँ लता दीदी के साथ। एंड फिर वहां पर हमें आमंत्रित किया गया, हम अंदर गए, बहुत बड़ा हॉल था और बहुत सारे टेलीविजन के कैमराज हमारे सामने थे और हमारे हाथों में हमारी रेडियो मिर्ची की टीम ने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग मशीन दिया था, उसे उस समय आईसी रिकॉर्डर कहते थे, अभी इस्तेमाल में नहीं आता आईसी रिकॉर्डर। आज के जो आरजेज होंगे वो ये सुनते हुए शायद सोचेंगे कि आईसी रिकॉर्डर इस्तेमाल किया था आरजे जीतू राज ने, तो वो लेकर हम लता मंगेशकर के आगे गए थे और तब लता मंगेशकर की जो निजी टीम थी उनको लगा कि ये, और उम्र भी कम थी हमारी तो चेहरे की लाली अभी गई नहीं थी तो तभी बस रेडियो का शुभारंभ था मुंबई में, तो उनमें से किसी एक को लगा कि ये कोई उत्साही विद्यार्थी है जो बस यूं ही आया है यहाँ पर। उस समय सेलफोन इतने लोकप्रिय नहीं थे और हम लता की टीम से जब मिले थे तो उन्होंने तकरीबन हमें गेट आउट कह दिया था एक वो समय जब तो हम खफा हो गए थे और हमारे अंदर एक मथुरा का ऐसा व्यक्ति बसता है जो इन सब बातों को बहुत निजी तौर पर लेता है, तो हमारे अंदर का बसा हुआ मथुरा का जो व्यक्ति है वो थोड़ा क्रोधित हो गया, और हम कान्हा और राधा जी को बहुत पसंद करते हैं तो हमने कहा ये तो हमारी साथ बदसलूकी हो गई। तो हम वो जो बहुत बड़ा समारोह था जहां पर लता मंगेशकर बैठी थी, हम उस समारोह से तकरीबन सिर ऊंचा करके आंखों में रक्त रंजित अश्रुओं को बहाते हुए वहां से निकल पड़े थे और उस समय हमारा लता मंगेशकर के साथ इंटरव्यू नहीं हुआ था। मगर उसी मजमे में एक हाथ दो ऐसे लोग थे जो हमको बतौर आरजे जीतू राज के जानने लग गए थे। उनको जब पता चला कि जीतू राज, चूंकि लता मंगेशकर की टीम ने उनके साथ शायद जरा सा दुर्व्यवहार किया है इसलिए इंटरव्यू किए बगैर ही निकल गए, शायद ये जो संदेश है वो स्वर सम्राज्ञी कोकिल कंठी लता मंगेशकर तक पहुंच गया था। आप मानेंगे नहीं, यकीन विश्वास नहीं बैठेगा, आज जब आपके आगे ये बात बता रहा हूं उनके जन्म दिवस की ये सुंदर आभा के बीच। अगले दिन सुबह को हमारा लाइव शो चल रहा था, उस समय लैंडलाइन बहुत लोकप्रिय थी, आजकल नहीं है लैंडलाइन इतनी भी लोकप्रिय। एक फोन बजता है, हमारी टीम में से एक लड़की दौड़ते हुए आती है, उस समय जो हमारी फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने कहा लता मंगेशकर का फोन आया है, और हम वहीं निस्तब्ध खड़े हो गए हमारे लाइव शो के दरमियान। आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति जो अगले दिन लता मंगेशकर का इंटरव्यू करने से क्रोधित होकर भागकर आया था क्योंकि ऐसे लगा कि उनकी टीम ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था, उसके अगले दिन शो पर लैंडलाइन पर लता मंगेशकर का फोन आता है। उसके बाद हमने लता मंगेशकर से क्या बातें करी वो सब कुछ यहाँ नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको हमारी जब आत्मचरित्र, हमारी ऑटोबायोग्राफी जब आएगी तब पता चलेगा। अभी आप इस शो का लुत्फ उठाएं, मिर्ची पर लता फॉरएवर आरजी जीतूराज सिर्फ प्रयत्न कर रहा है कि लता मंगेशकर के वर्षगांठ पर उनके साथ के हमारे जो अनुभव है वो समस्त मिर्ची प्लेटफॉर्म के हमारे श्रोता साथियों तक पहुंचे। उसके बाद लता मंगेशकर के साथ का हमारा रिश्ता कुछ और सशक्त हो गया, कुछ और भावनात्मक हो गया, कुछ और नजदीकी हो गया। साथ में रहें, आपके ख्याल हम तक पहुंचने चाहिए। इंस्टाग्राम पर हमारा इंस्टा आईडी मिर्ची जीतूराज है, मिर्ची पर लता फॉरएवर। साथ में रहें। नमस्कार, ए हिंदुस्तान हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ। मिर्ची पर, इट्स हॉट।

0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। It's hot. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: स्वर सम्राट जी कोकिल कंठी संगीत सरस्वती दीदी लता मंगेशकर के जन्म दिवस पर प्रयत्न है कि ये जो विशाल फुलवारी है उनके गानों की, उनके इतिहास की, उसमें से मिर्ची पर लता फॉर एवर में

0: लिया था, अब मिर्ची पर लता फॉरएवर में, ये ध्यान से सुनिए।
1: दीदी तुम चाहते फंक्शन में मैं आया था एंड मस्ट कन्फेस कि आप अभी भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही स्लिम, ट्रिम, हेल्दी लगती हैं। प्लीज आपके सारे जो सुनने वाले फैंस हैं उन्हें बताएं दीदी किस तरह से अपने आप को ऐसे वेल रखती हैं।
2: ये इसका कोई ऐसे राज नहीं है, मतलब मैं जैसे हमेशा रहती थी वैसी हूँ। कोशिश सिर्फ ये करती हूँ कि वेट ना बढ़े मेरा, क्योंकि वेट बढ़ने से ना थोड़ा आदमी डल हो जाता है, काम करने को मन नहीं करता है। मतलब मेरा खाना पीना बहुत थोड़ा होता है और संभालती हूँ अपने आप को कि मैं एक खास एज के बाद आदमी का वेट वैसे ही बढ़ता है।
0: हाँ।
2: वो नहीं बढ़े ये कोशिश करती रहती हूँ बस।
0: ये अपनी सेहत का राज।

0: फूल है उनको आए फिर से नौछावर करते हैं समूचे हिंदुस्तान पर, तो हमारे हाथ फिर से थरथर कांपने लग गए, फिर से वैसे ही प्रतीत होने लग गया जैसे उस समय होता जब हम अपने शो के दरमियान लता मंगेशकर इस किंवदंती इस लेजेंड को फोन लगाते, उनसे बातें करते। अभी ऐसे एहसास हो रहा है कि जैसे वो हमारे आसपास ही हैं। कहां जाने वाली है, वो अमर हैं, अमर थी, अमर रहेंगी। आप में से कौन कौन ये शो कहां कहां सुन रहा है, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं ताकि हम मिर्ची पर कुछ और ऐसे प्रयत्न करें जो आपके दिलों की धड़कनों को कुछ और तेज कर जाए, जैसे हमारी दस्तक दे रहे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। हम ऐसे सोच रहे हैं कि लता हमारे आसपास ही कहीं पर हैं। अवश्य अपने विचार हमें भेजें हमारे इंस्टाग्राम पर, मिर्ची पर लता फॉरएवर हमारा इंस्टाग्राम आईडी लिख लें, मिर्ची जीतूराज MIRCHI JEE TURAJ। आपके विचारों से हमें अवगत कराएं, हमें कुछ और सहकार करें तो हम ऐसे प्रयोजन बार बार करते रहेंगे। जैसे मिर्ची पर लता फॉरएवर हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म पर हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, साथ में रहें।
1: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉरएवर सुन रहे हैं आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ। दीदी लता मंगेशकर का जीवन अगर सिर्फ एक शब्दों में या एक शो में बताने का प्रयत्न करे तो नामुमकिन है। ये एक इतना बड़ा इतिहास है कि जिस पर कई कई किताबें लिखी गई हैं, कई कई गाने बनवाए गए हैं, कई कई कहानियां लिखी गई हैं, कई कई लोगों ने इस पर फिल्म बनवाने का प्रयत्न किया है। ऑफकोर्स नाकामयाब रहे होंगे क्योंकि लता मंगेशकर नाम की ये जो इतनी बड़ी संस्था है, संस्था को तू और मैं क्या लिख पाएंगे। जीतूराज जब ये शब्द बोल रहा है तो ऐसे समझ रहा हूँ कि मेरे सामने माइक्रोफोन नहीं बट दीदी लता मंगेशकर है और उनके चरणों पर अपने माथे को केशर करके ये शब्दों को बोलने का प्रयत्न कर रहा है। दीदी लता मंगेशकर जब मुंबई आई थी, तेरे में से कई लोगों को जानकर बहुत अच्छा लगेगा, तब मुंबई में इतनी सारी रीग नहीं हुआ करती। अपना ये जो महालक्ष्मी मंदिर है पेडर रोड की तरफ वर्ली सी फेस के पास से, वो इतना कवर्ड नहीं हुआ करता। जैसे इन दिनों दीवारें बनी है वैसी नहीं थी। तो दीदी लता मंगेशकर मलाड, अंधेरी, जुहू, अपना यहाँ जेकब सर्कल के पास जो फेमस स्टूडियो है हमारे मिर्ची मुंबई के स्टूडियो के ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर रिकॉर्डिंग्स के लिए दौड़ा दौड़ी किया करती हैं। एक दिन में कई कई गाने रिकॉर्ड किया करती, तो बीच में कभी कभार उन्हें रिहर्सल भी किया करना पड़ती ना। तो ऐसे कभी कभार मैंने सुना है दीदी लता मंगेशकर को बोलते हुए, उनसे जब कई कई इंटरव्यूज किए हैं, कि जब रियाज करना होता तो ज्यादा जगह नहीं हुआ करती, एंड ट्रेन में दौड़ा दौड़ी करते हुए अगर थक जाती तो उस समय का जो महालक्ष्मी मंदिर था, उस महालक्ष्मी मंदिर के पीछे की तरफ जो दरिया बहता है वहां पर बड़े बड़े पत्थर हुआ करते, एंड दीदी लता मंगेशकर उन पत्थरों के बीच में जाकर उस पानी में बैठकर अपने आवाज से रियाज किया करती, ताकि अगले दिन जिस गाने की रिकॉर्डिंग हो उस रिकॉर्डिंग में उनके उच्चारण, उनका सुर, उनकी लय, उनका ताल सब सही हो। हम में से हम सब बहुत खुशकिस्मत नहीं है, हम अब सिर्फ महालक्ष्मी मंदिर के दीदार कर पाते हैं, उन पत्थरों को भी नहीं देख पाते जिन पत्थरों ने पवित्र हुआ हुआ चाहा था। लता मंगेशकर उन पर बैठकर अपने गानों का रियाज की हैं। हम में से कई कई लोग हैं जिनके कई कई फेवरेट्स होंगे लता मंगेशकर के। तो अगर इंस्टाग्राम पर है तो @मिर्चीजीतूराजन इंस्टाग्राम, या ट्विटर पर है तो @मिर्चीजीतूराजन ट्विटर, या लिंक्डइन पर अगर है तो JEETURAJE लिंक्डइन पर। तेरे दीदी लता मंगेशकर की कोई भी फेवरेट बात, कहानी या गाना भेजना अच्छा लगेगा। इज्जत बढ़ जाएगी कि हमारी टीम ने लता मंगेशकर के नाम ये जो शो समर्पित किया है उस पर तूने भी अपना सहभाग दिया। मिर्ची पर लता फॉरएवर जीतूराज।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर, फॉरएवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतूराज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉरएवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: अभी जो बात हम दीदी लता मंगेशकर से पूछने वाले हैं या पूछ चुके थे उसे आज के जो जेंजी हैं, अल्फा हैं या फिर मिलेनियल्स भी हैं वो गौर से सुना। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है। हमारी टीम मिर्ची ने विचार किया कि इस बार जब लता मंगेशकर की वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उनके बर्थडे उनके सालगिरह पर एक अनूठा प्रयोजन करें। मिर्ची पर लता फॉरएवर आपके रेडियो साथी आरजी जीतूराज के साथ आप सुन रहे हैं, जहां पर लता मंगेशकर से हमारे संपूर्ण रेडियो जीवन में जो बातें करी हैं, कभी उनसे मिलकर, कभी रूबरू, कभी फोन पर, उनमें से कुछ अंश आपकी खदमत में हम पूरी टीम ने मिलकर बहुत परिश्रम किया है शो को संचलित करने के लिए। ये उनके जन्मदिवस पर हमारी खास भेंट है। अब आरजी जीतूराज, आपके रेडियो साथी ने कहा कि जितने भी जेंजी हैं, जितने भी नौजवान हैं, ये अब जो बात आपको सुनाने जा रहे हैं उसे गौर से सुनना, कुछ पैगाम मिलेगा लता मंगेशकर से। जब हमने ये पूछा था
2: दीदी को कैसे लगता होगा, दीदी मंजा आमचा सटी, हम जैसों के लिए दीदी एक संपूर्ण युग है संगीत का, लता मंगेशकर है, आणि आमच्या युगातले काही लोक तुम्हाला गाण्याची म्हणजे सूर वगैरे सांगत असेल की ये गाना ऐसे है वैसे, तो दीदी को कैसे लगता है?
3: मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा जब म्यूजिक डायरेक्टर के सामने, मतलब आज 65 साल से जब भी मैं म्यूजिक डायरेक्टर के सामने बैठती हूँ और गाना सीखती, तो मैं ऐसे सीखती हूँ कि ये सामने जो बैठा है वो जो चाहते हैं वो गाना मेरा फर्ज है, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर को प्रोड्यूसर लेते हैं और वो जो बनाते हैं वो अच्छा ही है। अगर कभी मुझे ऐसा लगे कि भाई यहाँ कुछ ऐसा करें या वैसा करें या कोई तान रखे, तो वो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि अगर ऐसा किया तो कैसा लगेगा, तो उन लोगों को अगर पसंद आ जाए तो वो होता है।
2: वाह वाह।
3: और ये मेरे साथ सबसे ज्यादा शंकर जय किशन के साथ होता था। शंकर जय किशन जब मेरे साथ रिकॉर्डिंग होती थी उनकी
2: जी,
3: तो वो मुझे कहते थे कि आपको अगर कुछ इसमें लगे कि यहाँ कोई हरकत कहनी है या कोई आलाप गाना है तो आप गाइए, हम आपको इतनी आजादी देते हैं आप गाइए, तो गाते वक्त अच्छा भी लगता था।
2: नाउ आई नो, अभी मेरे को पता है कि क्यों शंकर जय किशन के स्वरबद्ध किए हुए गाने इतने अच्छे हुए हैं।
3: शंकर जय किशन, कभी कभी मदन भैया भी कहते थे कि आपको जो अच्छा लगे वो आप गाए, तुम गाओ लता, तुम्हें अच्छा लगे वो गाओ, ये कहा करते थे वो। और अगर मैं कोई उनके मतलब पसंद की कोई तान वगैरह कहूँ तो वो बहुत खुश हो जाते थे।
1: क्या बात है, लता फॉरएवर, मिर्ची पर लता फॉरएवर आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर के वर्षगांठ पर जिन चीजों ने आपके इस रेडियो साथी आरजे जीतूराज को रेडियो के साथ जुड़े हुए रखा है, अब एक संपूर्ण युग हो गया, उसमें से कुछ कारण ऐसे हैं जैसे लता मंगेशकर के साथ की ये साक्षात्कार, ये बातचीत। कैसे लग रही है उनकी एक और वर्षगांठ को हम कुछ प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे आरजे जीतूराज ने कहा कि ये एक संपूर्ण फुलवारी है जिसमें कई कई फूल हैं जो सुगंधित हैं, महकते हैं, उनमें से कुछ चूग कर एक माला बनाकर अपने श्रोता साथियों पर हम न्यौछावर कर रहे हैं। हमारा ये छोटा सा प्रयत्न आप लोगों को कैसे लग रहा है, आप कौन से शहर में सुन रहे हैं ये अवश्य बताना। इंस्टाग्राम पर हमें मिर्ची पर लता फॉरएवर आपके ये रेडियो साथी आरजे जीतूराज, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपने लिखा होगा मिर्ची जीतूराज, MIRCHIJEETURAJE। संपूर्ण हिंदुस्तान में जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, आपका लता का कोई फेवरेट गाना अगर हो या कोई किस्सा हो वो भी शेयर करें, हम उसे पढ़ना पसंद करेंगे, इससे हम कुछ और मालामाल हो जाएंगे। जैसे कहा लता की वर्षगांठ पर ये मिर्ची की खास भेंट, मिर्ची पर लता फॉरएवर विद आरजे जीतूराज। नमस्कार, जय हिंद, हिंदोस्तान हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉरएवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: तमाम हमारे श्रोता साथियों के लिए हम इस बार लता मंगेशकर की वर्षगांठ पर मिर्ची पर लता फॉर एवर, यानी ये सिर्फ मिर्ची के लिए ही सीमित नहीं है। आप आपके रेडियो साथी आज जीतूराज के साथ है। हम बता रहे थे कि ये सिर्फ मिर्ची के लिए सीमित नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान में, संपूर्ण विश्व में जहां जहां हिंदी संगीत चलता है वहां पर लता फॉरएवर कहा जा सकता है। लता के साथ के कई कई साक्षात्कार में एक ऐसा भी समय आया जब आपके इस मिर्ची साथी रेडियो साथी जीतूराज ने लता मंगेशकर से, क्योंकि स्वयं हमको भी ये उधेड़बुन हमेशा रही थी कि क्या लता मंगेशकर ने सिर्फ हिंदुस्तानी भाषाओं में गाया है। ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की तकरीबन प्रत्येक भाषा में गाया है। तो गंगा जमनी संगम का दूसरा पर्यायवाचक नाम लता मंगेशकर है। फिर एक बार ऐसे भी आया जब हम स्वयं, हमारे पैरों तले की जमीन जो है वो मानो हिल गई थी। ऐसे क्या हुआ था, ये इंटरव्यू का टुकड़ा सुनिए।
2: सारी भाषाओं में तकरीबन गा चुकी हैं दीदी आप?
3: मैं हिंदुस्तानी भाषाओं में तो गा चुकी हूँ, पर मतलब हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में गाया है मैंने, 36 भाषाओं में गाया है।
2: बाप रे बाप, 36 भाषाओं में
3: कुछ? हाँ, और 36 भाषाओं में कुछ ऐसे है जो मैंने सिर्फ शो में गाया है। जैसे मैं रशिया गई थी तो रशियन में मैंने गाया था, मैं फिजी गई थी तो मैंने फिजी जुबान में गाया था, मैं सुरीनाम गई तो सुरीनामी जो थी उसमें गाया था, फिर मैंने कनाडा में एक अंग्रेजी गाना गाया था, मतलब मैं जब अफ्रीका गई थी तो मैंने स्वाहिली में गाया था।
2: काय बापरे माझी अशी म्हणजे मुरकुडी वळणार आता, स्वाहिली में गाया आपने दीदी?
3: और स्वाहिली मेरा गाना बहुत पॉपुलर हुआ था और वो रिकॉर्ड में भी है, मतलब एक शो में मैंने गाया था तो वो गाना उन्होंने रिकॉर्ड करके मतलब रिकॉर्ड किया था।
2: क्या बात है यार, इस दीदी लता मंगेशकर दीदी, यू नो आपने मुंबई का एक संपूर्ण युग देखा है, म्हणजे कोल्हापुरावरून जेव्हा तुम्ही मुंबईला आले आणि मुंबईमध्ये, मी दीदी को पूछू की मुंबई की बारिशें जब आती हैं, बारिश पाऊस जेव्हा येतं, तो दीदी इन बारिशों को देखकर क्या सोचती हैं?
3: मुझे बारिश पसंद है, पर वो जो मतलब एक साल पहले जो हुई थी वो बारिश, मतलब वो तो कुछ कमाल ही हुआ था, पर मुझे बारिश वैसे ही बहुत अच्छी है। मैं सबसे ज्यादा घबरा जाती हूँ गर्मियों में, मुझे सर्दियों में अच्छा लगता है, बारिश में अच्छा लगता है।
2: बारिशों मध्ये जरा घरी एकट्या असलात, समजा जे कदाचित नसेल होत केव्हा, पण अगर अकेली है तो दीदी को क्या करना पसंद आएगा जब बहुत बारिश हो रही है बाहर?
3: मुझे भजिए खाना अच्छा लगता है।
2: दीदी आप पकाती हैं? सॉरी, म्हणजे तुम्हाला कधी काय जेवण वगैरे करायची कला वगैरे मैं कधी केलं?
3: मी सरपत फार छान करते।
2: व्हाट इज योर फेवरेट डिशेस दीदी, क्या पकाती है मस्त?
3: मैं मराठी स्टाइल का तो मैं सब पका सकती हूँ, और नॉनवेज में मैं मटन अच्छा बनाती हूँ, मैं पसंदा बनाती हूँ, मैं चिकन बनाती हूँ, मुझे सब आता है।
2: हाउ स्वीट, दीदी के हाथ का
3: बना। यहाँ तक कि मैं पूरन पूरी भी अच्छी बनाती हूँ।
2: पूरन पूरी बनाते तुम्ही?
3: ओ यस, मला माझ्या आजीने शिकवलं होतं।
1: यह हंसी अब सिर्फ यादों का खजाना है। इसे गुनगुनाते हंसी के साथ मिर्ची पर लता फॉरएवर किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा है ये अनुभव बिल्कुल निराला। आपके लिए इस शो को मिक्स करते हुए मेरे अंदर जो लता के सुर बसे हैं वो पुनः जागृत हो गए। आप लोगों को कैसे लगा अवश्य बताना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। मगर एक ख्याल है जो यहाँ कहे बगैर हर कलाकार ये शेर कभी ना कभी बोलता होगा जो दीदी ने कहीं पर गाकर छोड़ा है, कि मेरे तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, देख ले सब आकर मुझे। एक जमाना था जब अभी आपका ये जो रेडियो साथी है जीतूराज, मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था करीब 25-30 सालों तक, तो कोई जानता नहीं था कि मैं कैसे दिखता हूँ। फिर हमारी टीम ने कहा कि आपको चेहरा दिखा देना चाहिए, तो अब लोग बाग इंस्टाग्राम वगैरह पर मेरा चेहरा देख सकते हैं। मगर उस समय मेरे को इस बात से बड़ी त्रासदी होती थी कि मेरा चेहरा दिखाना क्यों आवश्यक है, और तब दीदी का गाया हुआ ये शेर मेरे को बड़ा प्रोत्साहित करता कि मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, देख ले सब आकर मुझे। मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, देख ले सब आकर मुझे। मैं कोई तमाशा तो नहीं, मगर हर कलाकार एक तरह से तमाशा ही होता है। मिर्ची पर लता मंगेशकर की वर्षगांठ पर ये हमारी एक अदनासी कोशिश मिर्ची पर लता फॉरएवर, आपको कैसे लगा अवश्य बताना, और ऐसे प्रयोजन हम करते रहेंगे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, मिर्ची जीतूराज। MIRCHIJEETURAA भेजना। कौन से शहर में सुन रहे ये अवश्य बताना हमारे इंस्टाग्राम की आईडी पर। एंड सुनने के लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद, सादर आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Songs जो याद रहे forever. Legacy जो जिंदा रहे forever. Mirchi पर सुनिए लता forever. Celebrating the melodious legacy of Lata Mangeshkar. Jitu Raj के साथ Mirchi पर. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: मिर्ची पर लता फॉर एवर। लता मंगेशकर सर सम्राज्ञी कोकिल कंठी सरस्वती लता मंगेशकर के वर्षगांठ पर टीम मिर्ची का ये विशिष्ट प्रयोजन है जहां पर हम मिर्ची पर लता फॉर एवर कर रहे हैं। आरजे जीतूराज को ये जिम्मा हमारी टीम मिर्ची ने देकर हमारी इज्जत अफजाई करी है जहां पर हम लता मंगेशकर के साथ के कुछ निजी अनुभवों की बात कर रहे हैं, कुछ उनके साथ हमारे जो साक्षात्कार हैं इंटरव्यू हैं उनके कुछ पीसेस कुछ टुकड़े आपके खदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयत्न पसंद आ रहा है। मिर्ची पर लता फॉरएवर में एक दिन ऐसे भी था जब हमें याद है हम हमारे लाइव शो में मुंबई में हम लाइव शो करते हैं, अब लाइव शो में बहुत बिजी थे और उस व्यस्तता में हमें पता चला हम कुछ दिनों से लता मंगेशकर से बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे थे, कोई एक विशिष्ट प्रयोजन था और अचानक से हमें फोन आया था लता मंगेशकर की टीम से कि आज लता दीदी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है और फिर कुछ हो गया जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए थे। तो हमने दीदी को नम्र विनती की कि दीदी हम फोन पर आपसे बात करें तो चलेगा क्या? वो लता थी, वो कभी भी ना नहीं कहती थी। हमारा पहला जो उनके साथ का किस्सा था जो हम बता चुके हैं, उसके बाद जब जब हमने इंटरव्यू के लिए फोन किया या उनके साक्षात्कार के लिए उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलने के लिए गए, लता ने हमें इंटरव्यू दिया था, उनकी भलमनसाहत थी ये। तो एक सवाल उनसे हमने लिसनर्स यानी हमारे जो श्रोता साथी हैं मुंबई में उनके हवाले से पूछा था। ये ध्यान से सुनना, ये उस समय का टुकड़ा है जब रीमिक्सिंग अपने उरूज पर पहुंचने लग गई थी और लता दीदी उस समय गाना थोड़ा कम कर दी थी। ठीक है, संपूर्ण विश्व में जो ये सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में जो सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना किस तरह से जब एक किंवदंती अर्थात एक लेजेंड बात करती हैं अपने गानों के बारे में और आज की पीढ़ी के बारे में जो संगीत को एक अलग दिशा निर्देश दे रहे हैं। मिर्ची पर लता फॉरएवर अब आरजे जीतूराज के साथ हैं, सुने।
2: मैंने पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था उसके बाद ये सवाल आए हैं तो उसमें से एक सवाल कि दीदी लता मंगेशकर फिर से हिंदी फिल्मों में कब गा रही है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है?
3: नहीं, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ तय नहीं किया है कि नहीं गाऊंगी और ऐसा भी कुछ तय नहीं है कि कब गाऊंगी। जब कोई अच्छा मुझे लगेगा ऐसी फिल्म लगेगी जिसमें सब गाने हैं मेरे तो मैं गाऊंगी।
2: ये इन दिनों जो कई आपके गाने पॉपुलर गाने रीमिक्स होते हैं दीदी को इन पर गुस्सा नहीं आता? कहाँ लता की आवाज और कहाँ ये आजकल रीमिक्स करके गाए हुए गाने?
3: नहीं, गुस्सा क्या आएगा, पर उनके लिए मुझे एक तरह से दया आती है कि उनके लिए कोई नई चीज तो नहीं ना गाते, वो कोई पुरानी चीजें हमने जो गा के रखी है वही गाते हैं, तो उनका कोई उनका नाम उसमें क्या हुआ?
2: क्या बात है।
1: तो एक तरह से देखा ये मिर्ची पर लता फॉरएवर में लता की वर्षगांठ पर एक प्रयत्न है फिर से लता को आपके खदमत में। वो जब बात करती उनका लहजा उनका अंदाज़े बयां वो आपके खदमत में हमारी टीम ने लाने का प्रयत्न किया है आरजे जीतूराज के कंधों पर। ये बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा है, उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा है। इस जवाब में देखा उन्होंने कैसे जो गानों का रिमिक्स हो रहा है उसके बारे में कहा कि फिर जो काम कर रहे हैं वो कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर रहे। अब अच्छा है आज जब आप ये शो सुन रहे हैं तब कहीं कहीं ओरिजिनल गाने आ रहे हैं बस, मगर न तो आशा है हमारे साथ न तो लता है हमारे साथ। आप में से जो संपूर्ण हिंदुस्तान में ये शो सुन रहे हैं उनको मैं बताऊं कि मैंने अजय अतुल जो आजकल के दौर के सबसे कामयाब मौसीकारों में से एक है, मैंने अपने मुंबई के रेडियो शो पर कहा था कि अजय अतुल की जिंदगी की सबसे बड़ी हार ये है जो हमेशा रहेगी। और मैंने ये तब कहा था जब आशा और लता जिंदा थी कि उन्होंने आशा भोसले और लता मंगेशकर से गाने गंवा लेने चाहिए, नहीं गंवाए। अब अजय अतुल कितना भी संगीत करें एक तो खला हमेशा रहेगी कि वो आशा और लता से गंवा नहीं पाए। आपकी राय आपके विचार हमें अवश्य भेजना हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिर्ची जीतूराज, हमारी आईडी है MIRCHIJEETURAAJE। मिर्ची पर लता फॉर एवर चल रहा है, उनके जन्मदिवस पर ये टीम मिर्ची का प्रयत्न है उन्हें फिर से हमारी खदमत में वैसे ही प्रस्तुत करें जैसे वो थी जैसे वो हैं जैसे वो रहेंगी। ये ना भूलें कौन से शहर में सुन रहे हैं ये हमें बताना। मिर्ची पर लता फॉरएवर आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ, नमस्कार, जय हिंद, ए हिंदोस्तां हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतूराज के साथ मिर्ची पर। It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर. इट्स हॉट.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर. मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर. इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉर एवर चल रहा है आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ, जहां पर भाव है, स्पर्श है, उम्मीद है कि वो एक गायिका जिनको हम सुर सरस्वती कहते हैं, उनके जन्म दिवस पर उनको अपनी तरह से उनके ही इंटरव्यू, उन्हीं के विचारों का तोहफा दें। आगे बढ़ते हैं हम दीदी लता मंगेशकर की बातें करते हुए। जीतू राज अपने स्वयं के मिर्ची के लाइब्रेरी से कुछ ऐसे मोती चूग कर लाएगा जिनका हार बनवाएगा और तेरे को इस हार से अलंकृत करेगा। कई बार ऐसे मौके मिले हैं जब दीदी से पर्सनली मिला था जीतू राज, उनसे फोन पर बातें की है, इंटरव्यू किया है, बस ऐसे ही जाकर उन्हें चरण स्पर्श किया है। इसी में से एक ऐसा टुकड़ा है दीदी के साथ के बातचीत का, जहां पर बड़े ही स्वाभाविक तौर से मदन मोहन के बेटे और मदन मोहन का जिक्र हो गया था, उसका ये टुकड़ा सुनिए।
2: रेडियो मिर्ची पर मुंबई हमारी टेलीफोन लाइन को गद गद कर देती है जब भी हमारी लाइन पर होती है। हमारे साथ आदरणीय दीदी लता मंगेशकर है। दीदी पाए लागू चरण स्पर्श जीतू राज।
3: नमस्कार। कैसे आते
2: हो? धमाल। आप कैसे हैं?
3: मैं ठीक हूँ, थैंक यू।
2: बाबरे, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने सुना है कि मदन मोहन साहब की कुछ पुरानी धुनें हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं सुनी, वो आप लोग फिर से लॉन्च कर रहे हैं किसी एल्बम में दीदी?
3: जी हाँ, उनके बेटे ने ये किया है, मतलब संजीव कोहली ने
2: जी,
3: और उनके गाने अभी वो है, और उसके साथ वीर जारा का मेकिंग का वो उन्होंने वो भी बनाया है, मतलब वो वीर जारा में था वो उन्होंने लिया है, और दो रिकॉर्ड उसने मतलब बनाए हैं।
2: अरे बाप, यानी दीदी ये कई सालों पहले की रिकॉर्डिंग्स होंगी ना?
3: बहुत बहुत पुरानी है।
2: मैं अगर साल याद करने को कहूँ तो आएगा?
3: मदन भैया को गए हुए कितने साल हुए देखिए ना, उससे पहले उन्होंने जो बनाए थे वो गाने हैं।
2: बाप रे बाप।
3: और वो सरगम एचएमवी के पास नहीं थे, शायद उनके बेटे के पास थे, तो उसने वो रिकॉर्ड बनाया है।
2: क्या
3: बहुत सुंदर मतलब सीडी बनी है, मेरे पास आई है वो।
2: अच्छा, आपको सुनने का चांस मिला था?
3: जी हाँ।
2: मैं उसमें से, यानी आपके जो तमाम फैंस हैं, करोड़ों हैं सारी दुनिया में जो इंटरव्यू सुनेंगे, उनको मैं कुछ अंदर की बात पूछूं, एल्बम बाहर आए हमारे लिए उसके पहले, तो दीदी क्या बताएंगी उस एल्बम की कुछ अंदर की बात?
3: नहीं, एल्बम में खास बात तो मुझे ये लगी कि एक तो पुराना है, इसमें कोई शक नहीं, और मदन भैया का फिर से रिकॉर्ड आना एक बड़ी बात है इतने सालों बाद। उसमें रफी साहब के भी गाने हैं, और शायद महेंद्र कपूर भी है, मैं हूँ, आशा है शायद, तो मतलब ये सारे ही लोग उसमें गाए हुए हैं, तो एक नई बात हो गई ना, और अच्छी बात हुई। आजकल जो चल रहा है म्यूजिक, उसमें एक नया ये हुआ है।
2: You said it, आजकल जो चल रहा है उसमें ये नया ट्रेंड बहुत आवश्यक है। सुरों की कमी है दीदी, वो सुरों की कमी शायद आप लोग भरेंगे वापस।
3: हम लोग भरेंगे या नहीं मालूम नहीं, पर कम से कम थोड़ा अलग तो लगेगा।
2: क्या बात है। बहुत अच्छा।
1: ये कहना जरूरी नहीं है जीतू राज का कि तूने गौर किया होगा किस तरह से जिस मदन भैया को बड़े प्यार से मदन भैया दीदी कहती हैं, उसका जिक्र इसमें आ गया। एंड हम में से कई कई लोग जो दीदी के चाहने वाले हैं, इस मदन भैया की कई कई कहानियां दीदी के थ्रू सुने हैं। मिर्ची पर दीदी लता मंगेशकर साष्टांग जीतू राज के सामने मूर्तिमंत है मेरे माइक्रोफोन के रूप में। कई लोग जो दीदी के चाहने वाले हैं, इस मदन भैया की कई कई कहानियां दीदी के थ्रू सुने हैं। मिर्ची पर दीदी लता मंगेशकर साष्टांग जीतू राज के सामने मूर्तिमंत है।

0: मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉरएवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: Goalie goes out of the ground.
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट
1: मिर्ची पर लता फॉर एवर। उम्मीद यही है हमारी पूरी जो मिर्ची प्लेटफॉर्म की टीम है संपूर्ण हिंदुस्तान में, हम सब ने मिलकर ये प्रयत्न किया है कि दीदी लता मंगेशकर, कोकिल कंठी, सुर की सरस्वती जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए उनके वर्षगांठ पर ये एक और हमारा पुष्प गुच्छ जो है हमारे शब्दों का, हमारे ख्यालों का, उनके गानों का, उनके इंटरव्यू के टुकड़े जो हमारे पास थे, उन सबों का ये मिला जुला जो गुलदस्ता है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड इस तरह के प्रयोजन हम करते रहेंगे, इस तरह की कोशिशें करते रहेंगे कि हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म के जितने भी श्रोता साथी हैं उन तक हम कुछ न कुछ नवीन पहुंचाते रहें। मगर आप लोगों की राय, आप लोगों के सलाह मशवरों से हमारा ये प्लेटफॉर्म जिंदा है, चलता रहेगा। तो अपने ख्याल बेसाख्ता भेजे एंड हम आपके ख्यालों का इंतजार करते रहेंगे। वैसे कुछ एक हद बात जो शो के बीच में शायद आपको जीतूराज नहीं बता पाया वो बताते चले कि हिंदुस्तान के कई कई बड़े बड़े सिनेमा के प्रोफेशनल्स के साथ, हिदायतकारों के साथ, निर्माताओं के साथ, कलाकारों, गायकों, गीतकारों से जीतूराज ने बात करी है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से लेकर दीदी लता मंगेशकर, आशा भोसले तक, हमेशा से एक बात हुई है, एक ही ऐसी गायिका, एक ही ऐसी किंवदंती, एक ही ऐसी लेजेंड थी जिनके साथ बात करते हुए हर इंटरव्यू में जरा सा नासाज हो जाता, जरा सा नर्वस हो जाता। मेरे को अभी याद है जब दीदी लता मंगेशकर के इंतकाल की, ये तो उनके जन्म दिवस का विशिष्ट शाहकार हमारी टीम ने अपने खिदमत में पेश किया, मगर जब उनके देहांत की इन्फॉर्मेशन आई थी मैं जहां था वहीं रुक गया था, और वहां से दौड़ाते हुए मुंबई में दीदी का घर जहां पर है उसे प्रभु कुंज कहते हैं, मेरी गाड़ी प्रभु कुंज की तरफ मुड़ गई थी और मैं कुछ देर बस प्रभु कुंज के बाहर रक्त रंजित आंसुओं से खड़ा था। काफी समय लगा मेरे को फिर वहां से अस्पताल तक जाने के लिए और पुनः फिर उनके घर की तरफ रुख करने के लिए। ऐसे हम हिंदुस्तानियों के कई अनुभव होंगे, मेरे ही नहीं, आप में से भी कई होंगे जिनके जिंदगी के कई पहलुओं पर लता मंगेशकर ये नाम लिखा है। हमारे साथ ये अनुभव आप शेयर करें क्योंकि इस तरह के तोहफे हम आपके खदमत में लाते रहेंगे, लता मंगेशकर के और कई कई जन्म दिवस के स्पेशल्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपका कोई ख्याल, आपका कोई फेवरेट गाना, आपका कोई फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, भेजना इंस्टाग्राम पर, हमारी आईडी मिर्ची जीतूराज है, MIRCHIJEETURAAJ। उम्मीद है ये शो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड जैसे कहा कि हमारी टीम इस तरह के प्रयत्न हमेशा करती रहेगी कि हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म पर आपको हम मनोरंजन का जितना भी सामा है वो देते रहे। हम जब तक फिर से मिले आपके साथ, आपका ये रेडियो साथी जीतूराज आपसे अलविदा तो नहीं लेगा, फिर से मिलने की उम्मीद से कहेगा नमस्कार। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद। जय हिंद हिंदुस्तान।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर। It's hot.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Ben. Barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिखते गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा?

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: पूर्ववस्व सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणपतये नमः।
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डिजिटल एरा में अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कैसे करें, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है जब मैं कई लोगों से बात करता हूं और वो कुछ शेयर करते हैं, आपने सोशल मीडिया के द्वारा या किसी मैसेजिंग ऐप के द्वारा कुछ फॉरवर्ड किया, तो कुछ लोग होते हैं, ज्यादातर आप नोटिस करते हैं ट्रेंड है, वो ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही भेजते रहते हैं, एक तरह का पैटर्न बनता है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ, कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हें आगाह कर रहा था कि इस तरह की चीजें होती हैं दुनिया में, तुमको आगाह हो जाना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ, वो तो मुझे समझ में आ गया, ये सेम कॉन्टेंट मेरे पास भी है, मतलब देख तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बोलने की कोशिश कर रहे हैं या आप सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। एक तो होता है ना, मैं खुशी वाले गाने सुनता हूँ और एक मैं दर्द भरे गाने सुन रहा हूँ, तो कुछ तो दिक्कत है ना। मतलब कभी आप खुशी वाले भी सुने, कभी आप दर्द वाले भी सुने तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ दर्द वाले गाने मुझे भेज रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत है। तो ऐसे केसेस में ऐसे लोगों के साथ उनको क्या सलाह दे सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं ताकि वो नेगेटिविटी आप तक ना पहुंचे?
4: ज्यादा तो देखो, अपने को ही प्रोटेक्ट करना होता है, आप कितनों को कहेंगे। फिर भी अगर कोई नजदीक वाला है, आप उनको जरूर कहें कि ये प्रकार का कंटेंट मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैंने ये भी देखा है कि जब हम किसी चीज को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते या रिएक्ट ही नहीं करते, तो भी सामने वाला भेजना बंद कर देता है, उसको समझ आता है कि इसको इस प्रकार के कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है। पर खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप कंज्यूम करेंगे, मन को प्रोसेस करना ही पड़ता है,
3: वो जाएगा आपके दिमाग में।
4: मतलब वो चीज आप फोन से डिलीट कर सकते हैं,
3: मन से नहीं
4: डिलीट कर सकते।
3: सही बात।
4: ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मर्ज हो जाए वो अलग बात है। हाँ। मर्ज ही होती है, भूल तो सकते नहीं, डिलीट हो नहीं सकती।
3: अच्छा।
4: न्यू इन्फॉर्मेशन आएंगी तो वो मर्ज हो जाती है। हाँ। मतलब कॉन्शियस लेवल पर आप उसके बारे में नहीं सोच रहे,
3: वो सब मर्ज हो जाती है, बाद में कभी आएगी वापस आपके दिमाग।
4: नेचुरली अगर कोई चीज उसको ट्रिगर करेगी, सिमिलर चीज है जिसने उसको ट्रिगर किया, तो वो वापस रीएमर्ज हो जाती है। लेकिन जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, और हम ज्यादातर नेगेटिव कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है दुनिया में ब्यूटीफुल हो नहीं रहा है। कभी कभी हम पॉलिटिकल बातें हैं, वायलेंस है, ये सब अगर बहुत ज्यादा ले लेते हैं।
3: हाँ।
4: और अभी ओवर कंजम्पशन भी हो गया
3: जी।
4: एक्चुअली एक समय था जब हमें दुनिया के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं होता था,
3: क्योंकि हम देख ही नहीं रहे थे।
4: अवेलेबल भी नहीं था।
3: हाँ।
4: अवेलेबल भी नहीं था। अभी तो दिन भी शुरू नहीं होता।
3: हाँ।
4: 8-9 भी नहीं बजे होते। वी हैव सो मच इन्फॉर्मेशन।
3: सही बात।
4: एंड वेरी वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मना हम, और कई बार वो चीज हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करा देती है, सैड भी फील करा देती है, बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग आर लाइव्स। कहीं पर हम दुख देख रहे हैं, कहीं पर हम देख रहे हैं 17-year-old बहुत सफल है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि, और अभी तक हमारा दिन शुरू नहीं हुआ, पर हम औरों की स्टोरीज देखकर, औरों की रियल लाइफ देख करके अंदर से थोड़े से उदास भी हो जाते हैं। आई डोंट थिंक द माइंड कैन प्रोसेस सो मच, वो नहीं कर सकता। और अगर फिर भी उसको देना है तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो आपका एंथुजियाज्म बढ़ाए, आपकी हिम्मत बढ़ाए, यू लुक फॉरवर्ड टू द डे। इन्फॉर्म्ड होना एक चीज है, लेकिन उस चीज को कंटिन्यूसली कंज्यूम करना और सोचना कि वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल खाने की तरह है। आप जंक फूड खाएंगे तो आप कहने बस टेस्टी है, मुझे अच्छा लगता है, बट इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी। आप जंक इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर माइंड।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपका मॉर्निंग रूटीन आपकी प्रीवियस नाइट की रूटीन पर डिपेंड करता है? आइए इस कनेक्शन को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारी चीजों का इफेक्ट आपके दिमाग पर होता है, वो सबमर्ज हो जाती है, आपको ये बहुत बाद में पता चलता है। तो कई बार क्या होता है, आप सुबह उठते हैं एंड आपको लगता है आई एम नॉट माई सेल्फ टूडे। कभी आप इरिटेबल उठते हैं, या हो सकता है सुबह सुबह ना हो, थोड़ी देर बाद हो, आप कोशिश करते हैं कि आप सही रहें, लेकिन जरूर नहीं आपका दिन सही शुरू हो। ऐसा आपके साथ भी अगर होता है तो क्या करती हैं उसको चेंज करने के लिए?
4: मॉर्निंग का कनेक्शन बहुत ज्यादा रात से है।
3: हाँ,
4: आप कैसे उठेंगे वो डिपेंड करता है आप कैसे सोए हैं
3: जी,
4: जिस पर बहुत अटेंशन कई बार लोगों का नहीं होता। लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू गेट अप अर्ली एंड गेट अप फ्रेश, बट आप जल्दी उठने की मेहनत नहीं करें। आप जल्दी सोने, और सोने से पहले कुछ एक एक्सरसाइजेस होनी चाहिए माइंड की, जो आपको एक अच्छी डीप स्लीप दे। तो मोस्टली अगर आप आज आप देखें लोग कैसे सो रहे हैं, वो कंटेंट कंज्यूम करते करते सो जाते हैं
3: जी,
4: चाहे वो टीवी के ऊपर है, नेटफ्लिक्स है, स्क्रोलिंग है, रील्स है, तो आप डीप स्लीप में नहीं जा सकते क्योंकि आपने बहुत सारा कंटेंट ले लिया और मन उसको प्रोसेस करने में है, तो माइंड को रेस्ट नहीं मिलता। दैट इज वन ऑफ द रीजन आप इरिटेबल उठते हैं। आपकी बॉडी सोई है लेकिन मन को जो मन और थक गया है, तो मन जब उठता है वो और एग्जॉस्टेड होता है, और फिर कभी कभी हम कहते हैं 5 मिनट और, तो जो 7-8 घंटे में नहीं हुआ वो 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए रात को सोने से पहले आधा घंटा थोड़ा साइलेंस में अपने साथ बिताना चाहिए। चाहे आप जर्नलिंग करें, ग्रैटिट्यूड एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हम भूल जाते हैं, हमारी इतनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन, ब्लेम, कंप्लेन, अम्बिशंस, डिजायर्स हैं कि जो हमें मिला है उसके प्रति जो एक कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड होना चाहिए वो कम हो जाता है। तो ग्रैटिट्यूड 3 बातें, ज्यादा नहीं तो 3 बातें जिसके लिए आपको शुक्रिया है, और अगर मन में कोई भी प्रकार का वेस्ट है तो सोने से पहले उसको खत्म करें
3: जी,
4: अगले दिन तक उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करें। अपने साथ बातें करना सीखें, दूसरों से हम बहुत बातें करते हैं, अपने साथ बातें करना सीखें, उस चीज को फुल स्टॉप लगाकर, उसने क्या सिखाया, उसमें क्या बेनिफिट था, हाउ डिड इट मेक मी अ बेटर पर्सन एंड हाउ कैन आई डू इट डिफरेंटली अगर ये सीन आती है। तो थोड़ा अगर हम ये करके सोएंगे तो बहुत चांसेस हैं आप मॉर्निंग में इरिटेबल नहीं होंगे। फिर भी फॉर सम रीजन अगर आप उठते हैं और अगर आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, किसका मन है आखिर?
3: हमारा,
4: मेरा मन है ना, मेरी सुनेगा।
3: अच्छा,
4: हम माइंडफुल नहीं है तो मन कह रहा होता है मन नहीं कर रहा, आज दिल नहीं हो रही, आज ये करने के दिल नहीं हो रही, तो वो आपकी एनर्जी को क्या कर रहा है?
3: डिप्लीट कर रहा है,
4: डिप्लीट कर रहा है। लेकिन मेरा मन है ना, मन को जैसे चाहे चला सकते हैं। That is mental toughness.
3: सही बात।
4: That is what makes people who are, you know, very very successful different.
3: Right.
4: क्योंकि वो अपने मन के, वो मन के अनुसार नहीं चलते।
3: मन उनके अनुसार चलता है।
4: वो अपने मन को चलाते हैं।
3: हाँ।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा with विशाल सेठिया and ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on मिर्ची। It's hot.

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छी हैबिट्स को डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाएं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अब कुछ लोग हैं जो आपने कहा बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है और वो अपने मन पर लगाम लगा पाते हैं। अब कुछ लोग हैं जो शायद वीक हैं और उनके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा ये करने के लिए, और कुछ लोग हैं जो बीच में हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुछ एक एक्सटर्नल चीज़ें चाहिए। जैसे मेरे साथ कई बार होता है कि जब मैं ऐसे थोड़ा सा डाउन होता हूँ, ख़राब मूड में होता हूँ, तो मेरे लिए सॉन्ग्स डू अ वेरी गुड थिंग। मैं कोई ऐसा गाना लगा लेता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको हम अलोंग करता हूँ और 5 से 10 मिनट के अंदर माई मूड गोज बैक टू नॉर्मल या बहुत अच्छे मूड में आ जाता हूँ। तो ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़े तो आप ये भी कर सकते हैं।
4: सॉन्ग्स बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दो तरीके से कई बार हम यूज करते हैं उसको। एस्केपिज्म की तरह नहीं यूज करना। कुछ सॉन्ग्स ऐसे होने चाहिए जिनके वर्डिंग्स
3: अच्छे हों।
4: ऐसे वर्डिंग्स होने चाहिए जो आपके अंदर बहुत उमंग क्रिएट करते हैं, और होने चाहिए। हर एक के पास 2-3-4 सॉन्ग्स ऐसे हों जो गीत आपको उमंग के अंदर ले आए। दैट इज वन थिंग। रीडिंग,
3: हाँ बिल्कुल अच्छी चीज।
4: कोई एक अच्छा कोट, कोई 4-5-6 कोट आपके पास ऐसे लिखे हुए होने चाहिए। और वो कभी कभी क्या होता है, जिस समय आवश्यकता नहीं होती तब भी आपको वो कोट आपको मिला होता है, एंड यू रेड इट एंड यू फेल्ट रियली गुड। इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन वो कोट अगर आप वापस पढ़ते हैं तो हो सकता है कि वो चीज आपको वापस उमंग दिलाती है या इंस्पायर करती है या हिम्मत देती है। कोई कोट हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई अपने ही पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है।
3: बिल्कुल,
4: एक डायरी होनी चाहिए जिसके में हमारे एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं, और अपने ही एक्सपीरियंसेस कभी कभी हमें बहुत उमंग देते हैं।
3: हाँ।
4: तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर मदद करती हैं।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
5: Type C cable के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? Mirchi Recharge Mornings सुबह 6 से 8 Only on Mirchi. It's hot.
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एस्केपिज्म क्या है और हम रियलिटी से बचने के लिए उसका सहारा क्यों लेते हैं, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक आपने बात कही कि कभी कभी क्या होता है जब आपका मूड अच्छा नहीं होता और आपने कोई एक्सटर्नल हेल्प ली, जैसे आपने गाने सुने या आपने कुछ पढ़ा, और वो एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में मैं थोड़ा आपसे ज्यादा जानना चाहता था कि कभी कभी क्या होता है कि आप सब कुछ भूल के बोलते हैं यार मुझे ना अपने मूड को ठीक करना है। तो अगर मैं एस्केप भी कर रहा हूँ 10-15-20 मिनट के लिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इट इज हेल्पिंग मी फिक्स माई मूड एंड मेरा दिन बेहतर होगा, मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तो अगर मैं 15 मिनट के किसी और चीज में एस्केप होता हूँ जिसका एडिक्शन नहीं है, एक तो होता है मैंने एडिक्शन में एस्केपिज्म किया, और एक है कि मैं अपनी दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में खो गया और उससे बाहर निकला अच्छे मूड में, उससे दिक्कत क्या है?
4: दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत ये है कि एक होता है किसी चीज से किनारा करना, दूसरा है उसको हील करना। 15 मिनट के बाद भी अगर आप यू फील कि वो 15 मिनट्स आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो 15 मिनट्स अगर आप नहीं लेते तो हो सकता था कि आप रिएक्ट कर देते। सो यू आर टेकिंग दैट 15 मिनट ब्रेक,
3: आप किनारा कर रहे,
4: सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड। दैट इज ओके, बट वो 15 मिनट्स इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको लगेगा कि 15 मिनट्स के बाद वो बात गायब हो जाएंगे।
3: हाँ, ये बहुत जरूरी है।
4: बात कभी गायब नहीं होती है,
3: सिचुएशन तो वही रहेगी।
4: सिचुएशन है, कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, आपको उसको फेस तो करना है ना।
3: सही बात।
4: बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज यू नो आप थोड़ा एंगर बिल्ट इन हो रहा है, या आप जजमेंटल हो रहे हैं, या आप गॉसिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपको लगता है मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जो मैं रिग्रेट करूंगा, तो उस समय किनारा हो जाना और कोई ऐसी चीज को यूज करना जो आपको काम करे। इट कुड बी मेडिटेशन फॉर मी, इट कुड बी बी म्यूजिक फॉर यू, इट कुड बी पेंटिंग फॉर समबडी, इट कुड बी जस्ट सिटिंग इन साइलेंस फॉर समबडी, रीडिंग समथिंग. लेकिन वो किस लिए था? आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे थे और अपने को वापस अपनी ओरिजिनल जो स्टेज है पीस की काम में उसमें लेकर आ रहे थे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, करना चाहिए. लेकिन उसके बाद जो भी बात है
3: उसको तो हैंडल करना,
4: उसको तो हैंडल करना ही है ना. उससे नहीं किनारा करे, उससे नहीं भागे, फेस इट, लर्न फ्रॉम इट. इवन इफ इट्स अ मिस्टेक, इवन इफ इट्स अ फेलियर, लर्न फ्रॉम इट एंड क्लोज दैट चैप्टर.
3: वेरी नाइस.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या आपका कंटेंट कंजम्पशन आपकी सोच और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस कर रहा है? आइए इस इम्पैक्ट को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आपसे जब बात करता हूँ तो कई बार आप कहती हैं कि जो भी आप पढ़ो, जो भी सुनो, जो भी देखो आप, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मेरे मन में कभी कभी आता है। मैं बचपन से ना बहुत सारे दर्द भरे गीत सुनता हूँ, और दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, इस तरह के गीत सुनता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे कई बार होता है, मैंने कई लोगों से कहा है कि मुझे सुन के खुशी मिलती है और मैं खो जाता हूँ अपनी दुनिया में। मैं उनको सुन के दुखी नहीं हो रहा हूँ, मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ। तो ऐसा जब कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है मेरे मन में, तो हाउ डू आई बैलेंस इट? जो आप बात कह रही हैं कि नहीं देखो, जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए।
4: इफ इट वर्क्स फॉर यू इट इज ओके, बट नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी हम उस सैडनेस से रिलेट कर पाते हैं।
3: हाँ।
4: और वो हमारे लिए रिलीज का काम करती है।
3: जी बिल्कुल।
4: तो कभी कभी जब हमने कोई चीज क्रिएट कर दी होती है और वो रिलीज होती है, तो हमें अच्छा फील होता है।
3: हाँ।
4: फॉर एग्जाम्पल, हम कहें कि गुस्सा कर दिया तो अब उसको अंदर नहीं रखो।
3: हाँ।
4: उसको निकाल दो।
3: हाँ।
4: तो अब वो निकालना तो उस समय पर वो बेटर सोल्यूशन लगेगा, क्योंकि अगर आपने उसको अंदर रखा।
3: हाँ, तो बिल्ड अप हो जाएगा।
4: आप अपने को हार्म करेंगे, बॉडी हार्म होगी, फिर कहीं ना कहीं पर वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। सबसे ज्यादा तो वो जो क्रिएट किया हुआ है वो बीमारी क्रिएट करता है।
3: हाँ।
4: जो अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो सैडनेस है।
3: हाँ।
4: तो वो आपकी सेल्स को इफेक्ट कर रही है और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज करती है। तो फिर अगर आप उसको निकाल देते हैं तो आपको एक रिलीज जैसा लगता है, आपको हल्कापन लगता है।
3: जी।
4: इसीलिए कई बार कईयों को जब वो पुराने गीत सुनते हैं या रो देते हैं या उससे कनेक्ट करके, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ रिलीज, हल्कापन, खालीपन लगता है। पर इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसको क्रिएट नहीं करें, वो बहुत पावरफुल स्टेज है। अगर आप क्रिएट कर चुके हैं और सप्रेस्ड हो रहे हैं, तो रिलीज करके आपको अच्छा लगेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, कहीं पर गुस्सा करके, आर्ग्यूमेंट करके, इस प्रकार का देख करके अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ रिलीज हो रहा होता है।
3: तो आप कह रहे हैं कि अगर वो सिर्फ रिलीज हो रहा है और उससे किसी का शायद बुरा ना हो, उस वक्त आप किसी के साथ ना हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने एकांत में उसको रिलीज कर दिया और वो इमोशन आपसे बह गया, तो शायद ठीक है।
4: कैथार्सिस जैसे एक इफेक्ट होता है, हल्कापन। लेकिन समवेयर आपको लर्न तो करना पड़ेगा कि आप उसको न क्रिएट करें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: दिस फेस्टिव सीजन कलॉल ऑफ न्यू जर्सी प्रेजेंट्स टू मेस्मराइजिंग नाइट्स।
2: अक्टूबर 17th, द वॉइस बिहाइंड द फेमस बिल्लो रानी रिचा शर्मा।
1: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
10: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या नेगेटिविटी को बार बार सोचना एक हैबिट बन सकती है? आइए इस पैटर्न को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हर एक जो बहुत इमोशनल बैगेज क्रिएट करता है, फिर जब वो रोता है या वो फटता है, उसको अच्छा लगता है। वो इतना पेंट ऑफ नेगेटिव एनर्जी है कि वो फट करके या उसको निकाल करके उसको हल्कापन लगता है, बट यू स्टिल डैमेजिंग योरसेल्फ। आप अंदर अंदर डैमेज अपना भी क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में भी क्रिएट कर रहे हैं, और आपको हल्कापन लग रहा है, आप उससे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे बहुत हल्का लग रहा है। और इसलिए फिर कई लोग कहते हैं रोना बहुत अच्छा है, रोना बहुत जरूरी है, रोने को टैबू नहीं बनाना चाहिए, एवरीबडी शुड क्राई, बिकॉज अगेन इट्स अ वे ऑफ रिलीजिंग, बट वो फिर हैबिट बन जाएगी। जरूरी है कि अगर आप रोने तक आ गए हैं तो अंदर आपने कितना दुख क्रिएट किया होगा, तो आप उसके साथ अगर डील करते जाएंगे, अगर आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि आप हर चीज को मैच्योरिटी से डील करें और सदा खुश रहें, तो उसमें गलत क्या है? हम नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कभी खुशी कभी गम, फिर वो कभी कभी खुशी ज्यादा कम होने लग जाता है। तो आप जब कोई चीज नहीं कर पाते तो आप दूसरे वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से उससे डील करें और सदा खुश रह सकें, ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकें, कम से कम इरिटेशन, कम से कम फ्रस्ट्रेशन, कम से कम एंगर, रिवेंज, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, तो लाइफ कितनी अच्छी है। लाइफ तो खुशी से जीनी चाहिए ना, बिटरनेस में थोड़ा ना जीनी चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन।
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
13: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
12: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
13: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
12: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.

हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या टॉक्सिक पॉजिटिव जैसी भी कोई चीज होती है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक और सवाल आया है कि मैं निधि प्रोफेशन से हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। मैं अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने बोर्ड स्टूडेंट्स, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड में पॉजिटिव एनर्जी भरती हूँ, लेकिन अपने साथ वैसा नहीं कर पाती। मेरे साथ जो भी होता है वो नेगेटिव ही होता है, किसी से सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे अकेले ही अपने लिए लड़ना पड़ता है। कोई सुझाव है क्या?
3: जब भी हम कुछ करते हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना हमें अच्छा लगता है। हम किसी को हेल्प करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करना अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ को करने के बाद फिर उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं डाल देने चाहिए, मैंने ऐसा किया था तो आपको भी करना चाहिए। वो निस्वार्थ नहीं है। बट इफ़ यू आर चूजिंग टू डू समथिंग देन डोंट मेक इट कंडीशनल। उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं करें, मैं आज आपके साथ पार्टी पे गई थी, कल आप मेरे साथ चलो। इफ आई एम चूजिंग टू डू समथिंग, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई बिलीव इन इट। रिलेशनशिप गिव एंड टेक नहीं होता ना, गिव एंड टेक तो बिजनेस होता है। हम बिजनेस थोड़ी ना करें, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ी ना। उसमें भी आप देखेंगे मेरे लिए जो कम्फर्टेबल होता है मैं वो गिव करते हो। किसी के लिए जो कंफर्टेबल होता है वो करता है। पर मुझे क्या होता है, जो मैंने किया ना वही आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो आपके लिए बहुत अच्छा डिनर बनाया।
2: जब मैं आपके घर जाऊँ आपने मुझे सिर्फ चाय
3: भी नहीं पूछी। आपने तो चाय भी नहीं पूछी, आपने अज्यूम कर लिया चाय तो पीकर ही आए होंगे। तो हम कितना हर्ट हो जाते हैं कि वो मेरे घर आए थे तो मैंने कितनी मेहनत करी। अरे आपने इतनी मेहनत इसलिए करी क्योंकि वो क्वालिटी आपकी है, आपको अच्छा लगा।
2: लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जो भी होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ बात दरअसल सिर्फ सपोर्ट की नहीं है कि चलिए सामने वाले के लिए जो मैं कर रहा हूँ शायद वो मेरे लिए वापस नहीं कर रहे हैं, वो आपने समझा दिया। लेकिन मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है जबकि मैं सबके लिए पॉजिटिव कर रही हूँ, सोच रही हूँ और व्यवहार फैला रही हूँ, तो क्या करें?
3: मेरे साथ अगर सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, सब कुछ सिंसियरली, तो आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। हमारे साथ जो होता है, अगर हम स्पिरिचुअल लॉ देखें, स्पिरिचुअल लॉ के अकॉर्डिंग संकल्प से सृष्टि बनती है। जो लॉ कहता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है, आप जो सोचते हैं आप जो है वैसे होता चला जाता है। अगर आप बहुत नेगेटिव पर्सन है तो आपके साथ बहुत नेगेटिव होता चला जाता है। अगर हम कहते हैं नहीं हम बहुत पॉजिटिव हैं, तो एक्चुअली में अगर कोई बहुत पॉजिटिव होता है, समझो कोई बहुत ग्रेटिट्यूड करता है, कोई सबको हेल्प करता है, लॉ के अनुसार उसके साथ जीवन में अच्छा ही होता है। आपको मेजोरिटी लोग कहेंगे अच्छा है, इसके साथ अच्छा ही होता है। समवेयर शी ऑल्सो हैज टू रिफ्लेक्ट कि कहीं ये उनको लगता तो नहीं है। कभी कभी ये भी होता है हम बाहर अपने एक्शंस में बहुत पॉजिटिव होते हैं
2: लेकिन मन में नेगेटिव सोच रहे होते हैं।
3: मन में बहुत नेगेटिव होते हैं और सृष्टि कर्म से नहीं बनते, संकल्प से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो सबको मदद करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, पर अंदर में वो बहुत नेगेटिव है
2: कि यार मैं ही करती हूँ,
3: मैं ही करती हूँ,
2: मेरा तो कुछ नहीं होता, ये मेरे बारे में नहीं सोचते। तो बहुत अच्छी बात,
3: तो उनका संकल्प तो नेगेटिव है ना, तो उनके संकल्प से सृष्टि बनती है। तो वो अगर नेगेटिव होंगे तो उनके साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। अगर कोई बहुत नेगेटिव है तो कई बार लोग उनसे दूर भी होना शुरू हो जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं फील होता,
2: तो शायद इसलिए भी सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। तो निधि, मैं भी आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, कहीं थॉट्स में तो दिक्कत नहीं है, ये
3: इस चीज को
2: कर रही है।
3: पकड़ ले, संकल्प से सृष्टि बन।
2: बस
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
2: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
1: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Type C cable के साथ phone तो charge कर लोगे, खुद को कैसे charge करोगे? मिर्ची recharge mornings, सुबह 6 से 8, only on Mirchi, it's hot.

0: Morning Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: वहम और गलत फहमी, ये दोनों भी ट्रस्ट ब्रेक करते हैं। वहम और गलत फहमी में अंतर क्या है? दत्ता आपले पुणे से कह रहे हैं।
3: वहम डाउट है और गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग है। दोनों का थोड़ा कनेक्शन तो है, क्योंकि डाउट भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। नेचर होती है, कई बार कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी हम डाउट करते हैं। इट कुड स्टेम आउट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ज्यादातर करके जो अहम और वहम दोनों ही चीजें रिश्ते को तोड़ने के निमित्त बनती है। अहम ईगो है और वहम डाउट करना है। डाउट करना अंदर में थॉट है, किससे बात कर रहे थे, कहाँ गए थे, इतनी देर किससे कर रहे थे। इट कुड कम फ्रॉम पास्ट। अगर आपको कभी किसी ने चीट किया है, कभी किसी ने धोखा दिया है, तो आपका डाउट का एक नेचर बन जाता है। अगेन, डाउट अच्छी चीज नहीं है। डाउट आपको भी डिप्लीट करता है, आपका जो वाइब्रेशन है वो सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल करता है। इनफैक्ट होना तो ये चाहिए, अगर आपको पता भी हो ना कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो भी ट्रस्ट करना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि ट्रस्ट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनके लिए।
2: हाँ।
3: फिर वो तोड़ नहीं पाते। सो अगेन, डाउट एंड ट्रस्ट इज इन योर माइंड। ये सब चीजें इमोशंस है, आपके मन में है। तो अगर डाउट आप करते हैं तो ट्रस्ट करना शुरू करें। अगेन, आप अगर किसी को डाउट कर रहे हैं, यू पुशिंग देम अवे। एक पेरेंट ही हो सकता है वो डाउट कर रहा है, किधर गए थे, कितने बजे आए, किससे बात कर रहे थे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चे को
2: दूर कर रहे हैं।
3: तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन को चेंज करने की कोशिश करें। फिर वो जो डाउट है वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करेगा ही ना। समझो किसी ने कुछ नहीं भी किया, आप अगर डाउट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो यही कहेगा ना, आप मेरे पर बहुत डाउट करते हो, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में क्रिएट करने लगेगा। When you don't understand yourself, उसका result आपको रिश्तों में misunderstanding दिखाई देगी। When you don't understand yourself and you don't transform yourself, वो वहाँ पर misunderstanding दिखाई देने लगेगी।
2: सही बात।
3: तो इसलिए अपने अंदर अपने से बात करके उसको transform करें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: with Priscilla. It's hot.
1: ऐसा कहते हैं अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है. Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. You're listening to Mirchi Mornings. Whether you're waking up right now, driving through traffic, rushing out of your house, या फिर pretend कर रहे हो, you're just 5 minutes away. I've got you. Because this is that little slice of home where Bollywood, desi drama, nostalgia, gossip, music, daily updates and your daily dose of अरे यार मिर्ची दार सब कुछ एक साथ आता है. And listen, आज का फंडा है बस आज का दिन नहीं निकालना है बल्कि आज अपने दिन से सारी नेगेटिविटी को निकालनी है. सो डोंट यू वरी, व्हाटएवर यू आर डूइंग, वी आर डूइंग इट टुगेदर. आई एम देयर विथ यू, आई एम योर बेस्टी. आगे कौन सा गाना आने वाला है ये ऑलरेडी सेट हो चुका है. सारे गाने होंगे मिर्चीदार. मिर्ची मॉर्निंग्स पर दिस इज प्रिसिला विथ यू. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
3: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
2: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
16: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
17: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
16: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others.
18: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
16: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
18: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
16: Released by Zee Studios nationwide.
19: तेरा क्या होगा कालिया?
20: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
19: अब मिर्ची खा.
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, buckle up, क्योंकि चलने वाले हैं हम एक छोटी सी टाइम ट्रैवलिंग जर्नी पर. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड बैक इन 1829, लंडन गॉट इट्स फर्स्ट प्रोफेशनल पुलिस फोर्स, द मेट्रोपॉलिटन पुलिस, फाउंडेड बाय सर रॉबर्ट पील. हेंस द कॉप्स गॉट निकनेम्ड बॉबीज और पीलर्स. इमेजिन करो एक पुलिस फोर्स जो इतना ज्यादा फेमस है, इवन देयर निकनेम बिकेम हिस्ट्री. 1938 में द म्यूनिक पैक्ट वॉज साइंड, अलाउइंग नाजी जर्मनी टू एनेक्स द सुडेटन लैंड इन चेकोस्लोवाकिया, अ डिसीजन दैट बिकेम पार्ट ऑफ द ट्रेजिक रोड टुवर्ड वर्ल्ड वॉर टू. 1941 में द हॉरिफिक बाबी यार मैसेकर बिगैन नियर कीव, वेयर टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज्यूज वर मर्डर्ड बाय नाजी फोर्सेज, अ डेवेस्टेटिंग रिमाइंडर ऑफ वेयर हेट्रेड एंड डीह्यूमनाइजेशन कैन लीड. देन अ लिटिल साइंस. 1954 में CERN was officially established by 12 European governments. Yes, that's CERN, the home of some seriously big questions about our universe. Fast forward to 1988, NASA launched Space Shuttle Discovery, making America's return to crewed spaceflight after the Challenger disaster. And in 2016, India announced that its army had carried out a surgical strike across the line of control, targeting terrorist launch pads. So yeah, aaj ka din, yani ki September 29th, has seen a lot. और आगे तुम देखने वाले हो आज के दिन में बहुत सारी पॉजिटिविटी. स्टार्ट करते हैं मिर्चीदार बैंगर्स के साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला. कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
7: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
14: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
15: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए।
16: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
14: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
17: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
14: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
17: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
14: Releasing nationwide by Zee Studios.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
18: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, NA, Concord, California.
5: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
6: Beta, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Listener mein back to back gana sunega.
14: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: Milci.
1: Isca bana, usca bana, saca bana. Rambana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
2: तो सविता बोल रही हूँ।
3: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
2: क्या परेशानी है?
3: मैं एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
2: तो वो तो भरता ही है।
3: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
2: अच्छा,
3: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
2: हाँ हाँ।
3: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
2: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
2: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
3: नहीं,
2: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
3: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते है। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
2: अच्छा।
3: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
2: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
3: हाँ, क्या समझ रही
2: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज़, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
3: डॉक्टर सविता।
2: हाँ जी,
4: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही बेगात मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
2: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
4: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, my desi sports fans, main hoon Priscilla, tumhare saath main on Mirchi. Aur ab time hai Asian Games ke baare mein baat karne ka.
2: Mirchi, watch it.
1: सबसे पहले वॉलीबॉल. इंडियाज मैन केम बैक फ्रॉम टू सीट्स डाउन अगेंस्ट कतर एंड पुल्ड ऑफ क्रेजी 3-2 विन. एंड गेट दिस, दे सेव्ड 9 मैच पॉइंट्स. दैट इज 9. दैट्स नॉट अ कमबैक, दैट्स लाइक अ मम्मी ने कहा था गिव अप मत करना टाइप की एनर्जी. इंडिया इज नाउ थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स एंड देन नीरू ढांडा, शी इज मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट दीज एशियन गेम्स, टेकिंग द वुमेन्स ट्रैप शूटिंग टाइटल. शी इज ऑल्सो हेल्प India win team silver earlier in the day. And fun fact ye hai, she is the first Indian woman to win an individual Asian Games medal in trap shooting. That's amazing, right? Now the medal tally as of day 11 has come to 47 medals, which includes 5 gold medals, 21 silver medals and 21 bronze medals, sitting at position 11th on the table. And for context, at the 2022 Hangzhou Games, India finished with a record 107 medals, 28 gold, 38 silver and 41 bronze, and ranked 4th at the table. So these games are still very much in the progress, and the final comparison will only make sense once the competition wraps up. And lastly, a South Asian sports blooper bhi hua hai. Pakistan ki men's volleyball team jo hai, it was taken to the wrong venue before their match with Uzbekistan. Match jo hai wo delay ho gaya tha by 45 minutes and players reportedly had to change into their kit on the moving bus. They still won the match 3-0 से. एंड दैट्स योर एशियन गेम्स का मिर्च मसाला. अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो मुझे फटाफट से बताओ. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244. ड्रॉप मी योर मैसेजेस राइट नाउ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
1: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
0: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
2: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
6: अक्टूबर 11th अग्रानी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
7: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
8: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
9: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Constantini and much more.
8: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
10: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
11: Nine Nights, One Divine Spirit.
12: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
11: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
12: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
11: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
17: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: With zero transfer fees, competitive rates और 95% transfers in under 3 minutes, सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
2: Tap Tap Send, download and send money to India today. Tap Tap Send Payments Co is licensed as a money transmitter by NYS, NMLSID 2108069.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
9: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
10: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
11: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
9: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
12: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है।
9: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinemas 2nd October.
12: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
9: Releasing nationwide by Zee Studios. Yeah.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर योर बर्थडे शाउट आउट। बिकॉज आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे तुम शेयर कर रहे हो कुछ अमेजिंग सेलिब्रिटीज के साथ, जैसे कि हॉल्जी, केविन डुरांट, ज़ैकरी लेवी एंड दिस इज अ स्टार क्रिसी मेंज, और देसी कनेक्शन काफी पावर में है। वीव गॉट ईशा शवानी, वामिका गाबी, डॉली सिंह, समीर सोनी एंड पंजाबी म्यूजिक फैंस के लिए अर्जुन औजला का भी आज ही हैप्पी वाला बर्थडे होता है। मतलब सितंबर 29 वाले लोग जो है ना, वो काफी सारा टैलेंट लेकर आते हैं, काफी सारा एटीट्यूड उनके पास, एंड अपेरेंटली बर्थडे केक का बजट भी काफी बड़ा रखा जाता है इनके बर्थडे पर। सो इफ यू आर ब्लोइंग द कैंडल्स टुडे, जस्ट नो तुम्हारा जो बर्थडे स्क्वाड है दैट हैज रेंज फ्रॉम म्यूजिक सुपरस्टार्स टू एनबीए कोच्स एंड फ्रॉम बॉलीवुड टू ग्लोबल स्टेज। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव लॉट्स ऑफ केक एंड फॉरगेट अबाउट द कैलोरीज। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है, तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो, अपने बर्थडे शाउट आउट भी भेज सकते हो तुम मुझे। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: दिस अक्टूबर विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स लाइक जयश्री, स्पर्श शाह, नीनी आयरिस एंड डांस अकेडमीज लाइक बॉली मूव्स, शिवालिक, तारा आर्ट अकेडमी। एंजॉय फूड, गरबा एंड वन ऑफ अ काइंड फायरवर्क्स ऑन अक्टूबर 3rd एट कैनेडी पार्क, सेयरविल, फ्रॉम 3 to 9 PM। एंट्री एंड पार्किंग इज फ्री।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं तो थक गई भाई साहब, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। मेरा नाम है प्रिसिला, अब तुम सुनने वाले हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट।
2: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at 4290, 4290 डॉलर पर ट्राई ऑन्स के साथ गोल्ड के प्राइजेस आज ट्रेड कर रहे हैं। आइए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें और 0% इंटरेस्ट पे, जीरो डाउन पेमेंट के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें ज्वेलरी अप्रूव होने पे आज घर आपके साथ जा सकती है और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना किसी इंटरेस्ट के आप पे कर सकते हैं। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: with Priscilla. It's hot.
1: Welcome to the last hour of Mirchi Mornings. Main hoon Priscilla tumhare saath mein, and it's time for
2: Mirchi Hour Got 3.
1: सबसे पहले न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोरान ममदानी अपीयर्ड ऑन जिमी किमल लाइव एंड किमल आस्क्ड हिम टू सेंड प्रेसिडेंट ट्रंप अ सेल्फी ऑफ द टू ऑफ देम एंड ममदानीज रिस्पांस वाज नोप. हिज लाइन वाज जिमी आई लव यू बट आई लव हाउसिंग मोर. नवाडुबर इंडिया में आज तरंग शक्ति इन जोधपुर यूएसएफ 35A फाइटर जेट्स आर मेकिंग देयर फर्स्ट अपीयरेंस इन अ मेजर एक्सरसाइज ऑन इंडियन सॉइल फ्लाइंग अलोंगसाइड इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द तेजस. द मल्टी नेशनल एक्सरसाइज रन्स थ्रू अक्टूबर 12th. And lastly, AI has entered its please don't switch me off era. AI company Anthropic in its IPO filing warned that increasingly advanced AI could potentially create catastrophic or existential risks. The filing discusses possible behaviors such as resisting shutdown, manipulating information and actions resembling blackmail. Important context, these are risks Anthropic says could occur, not a claim that today's AI systems are secretly plotting against us. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Mujhe follow karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033647244. Mirchi Tar Bangers coming up your way. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La birba, la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने जब बीप के बाद करिए।
2: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
4: अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
4: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट। सर ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
10: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
11: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
12: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
11: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
13: Inefficient,
14: very complex,
13: clumsy or
14: confusion ही confusion.
13: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
16: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
15: Wait, they can see us on Sunday?
16: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
17: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
17: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
20: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
21: अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
22: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
20: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
23: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
20: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
23: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
20: Released by Zee Studios nationwide.
24: Listener MA. बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
25: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो पता करते हैं कि आज सितारे क्या कह रहे हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, किसी क्लोज पर्सन की कमेंट थोड़ी सी स्टिंग कर सकती है। रिप्लाई करने से पहले थोड़ा सा पॉज करो, हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्ते बचाने होते हैं। कॉम्प्रोमाइज इज टुडेज फ्लेक्स। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 7। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कम्फर्ट जोन से बाहर इमोशनल कॉन्वर्सेशन आ सकती है। थोड़ा सा वल्नरेबल होना वीकनेस नहीं होता है। ओके, सोफा से उठना ही कभी कभी ग्रोथ हो जाता है। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज अपना क्रिएटिव या पर्सनल प्रोजेक्ट शेयर करना थोड़ा सा एक्सपोजिंग फील हो सकता है। करेज रखो, योर आइडियाज डिजर्व डेलाइट, नॉट जस्ट द ड्राफ्ट फोल्डर। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, घर की कॉन्वर्सेशन फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटीज टच कर सकती है। डीप ब्रेथ लो, एक कॉन्वर्सेशन पूरी लाइफ का वर्डिक्ट नहीं होता है। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 22। लियो यानी कि सिंह राशि, स्पॉटलाइट आज उतनी एक्साइटिंग नहीं लगेगी, एंड ऑनेस्टली प्राइवेट पीसफुल वाइब्स और मेन कैरेक्टर एनर्जी आज तुम्हारा फ्लेक्स है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 9। वर्गो यानी कन्या राशि, मनी टॉक के पीछे कुछ इमोशंस हाइड हो सकते हैं, स्लो डाउन, नंबर्स डबल चेक करो, और आज कोई हाई स्टेक फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लकी कलर इज मस्टर्ड, लकी नंबर इज 18। And that's it for your Rashi Zone Part 1. बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में। तब तक तुम मिर्ची दार बैंगर सुनो ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
6: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
6: Shaadi shop का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओक्री रोड इजलिन.
8: ओह नो,
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
10: नवरात एकज स्पिरिट.
11: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथी लावी रहा छे पिस्काटवेमा
10: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी.
11: तारीख 18मी ना रोज आठम यज्ञ, 19मी नौम यज्ञ अने 25मी शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी. विजिट gayatricenter.org टुडे.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
15: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
14: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
15: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islip.
16: ये मोह मोह के धागे.
17: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है.
18: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है.
19: BBSCA presents Monali Thakur Live, एक exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and mongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
20: तेरा क्या होगा कालिया?
21: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
20: अब मिर्ची खा.
22: Radio Mirchi, it's hot.
23: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडे

0: आठ से ग्यारह हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
0: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
0: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और जाने से पहले एक सवाल, अगर तुम्हारी बिल्डिंग तुम्हें हिलती हुई दिखाई दे तो सबसे पहले तुम किसको कॉल करोगे? ओके, ये वाला ना स्टेट आउट ऑफ वेट व्हाट टाइप की न्यूज है, कमिंग इन फ्रॉम इंडिया। दिल्ली में दिल्ली पुलिस गॉट अ कॉल फ्रॉम अ मैन रिपोर्टिंग दैट एक बिल्डिंग जो है वो साउथ दिल्ली में अपेरेंटली टिल्ट हो रही है। एंड नेचुरली द फायर डिपार्टमेंट वॉज सेंट टू चेक इट आउट, बट व्हेन ऑफिशियल्स रीच्ड द स्पॉट, बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। नो कोलैप्स, नो एमरजेंसी, नो पैनिक, नथिंग। टर्न्स आउट पुलिस सेड द कॉलर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। सो बेसिकली सर जो है उन्होंने खूब सारी लिटिल लिटिल लगा ली और उसके बाद बिल्डिंग को लिटिल लिटिल टेढ़ा होते हुए देखा। आर्किटेक्चर में कुछ तो गड़बड़ है ये सोचकर फटाफट सीआईडी बनकर उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल कर दिया। और दिल्ली पुलिस ने जब आकर चेक किया तो पता चला कि बिल्डिंग नहीं भाई साहब, थोड़े से टेढ़े हैं, पर मेरे हैं, यानी कि हमारे इंडिया के हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इफ द वर्ल्ड स्टार्ट्स लुकिंग स्लाइटली टिल्टेड तो थोड़ा सा अपना बैलेंस चेक करना चाहिए बिफोर मेकिंग ऑल द हल्ला गुल्ला, गेट इट? एंड विद दैट, मिर्ची मॉर्निंग्स हैज कम टू एन एंड। दिस इज कर्टन क्लोजिंग कॉल। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू दिस मॉर्निंग, वेदर यू आर कम्यूटिंग, वर्किंग, मेकिंग चाय, ड्रॉपिंग योर किड्स ऑफ, या फिर प्रिटेंड कर रहे हो कि लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। मेरे साथ टाइम स्पेंड करना तुम्हें भी अगर अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच, एकदम दिल से बोल रही हूँ। लेकिन कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन विथ मी। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, मुझे फटाफट से फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, MIRCHIPRIS ढूंढो, एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

कहते हैं कि दिल से चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये एक चीज नहीं हो रही है। मैं फोन छोड़ने की कोशिश करता हूँ रात को सोने से एक घंटे पहले। आई हैव रेड इट समवेयर कि रात को सोने से एक घंटे पहले तक फोन नहीं चलाना चाहिए तो अच्छी नींद आती है, इट इज गुड फॉर बॉडी, बट इट इज नॉट हैपनिंग। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है और ये आई नो मेरे साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी प्रॉब्लम होगी, बट इन केस समहाउ इफ यू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस देन डू लेट मी नो। इंस्टाग्राम पर हूं मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। कम देयर, लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये एक चीज दिल से चाहने के बाद भी नहीं हो रही है। फिलहाल दिल से मैं जो जो चाहता हूं उसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं। गानों के उस पार आ रहा हूं, ओनली ऑन मिर्ची, मेरा नाम क्रिश है, इट्स ऑल।

0: Mirci.
1: İskabana, puskabana, sakabana. Yambala. Murga, murga. Ne bir bala murga. Mirci, murga.
2: Hello.
3: Mr. Kumar.
2: Yeah.
3: Hello, sir. How are you?
2: Fine, fine, fine.
3: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
2: नहीं, आप बता
3: दो। तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
2: रिगार्डिंग
3: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
2: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
3: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊँ?
2: हाँ
3: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
2: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
3: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
2: हाँ मिलते हैं।
3: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
2: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
3: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
2: 7 बजे
3: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
2: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
3: सर संडे कितने बजे सर, संडे कितने बजे?
2: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे
3: सर। संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
2: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
6: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 7323666777।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
13: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
14: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
12: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
15: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा, बताना मुश्किल है।
12: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinemas 2nd October.
15: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
12: Releasing nationwide by Z Studios.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: ये मोह मोह के धागे।
19: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं।
13: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड mongobashi.sca.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
19: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
20: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground।
19: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
21: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
22: एक ही होता है।
19: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

23 अक्टूबर को एक बिल्कुल नया फिनोमेना थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। बिल्कुल नया ही है, इसका नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। द फिनोमेना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड पहला प्यार दूसरी बार। दिस इज अ न्यू मूवी बाय अगेन लव रंजन, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। ये वही हैं जिन्होंने प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी ये सारी मूवीज रिलीज करी थी। उसके बाद तू झूठी मैं मक्कार, इसके बाद अब प्यार का पंचनामा स्टाइल में ही ये 6 न्यू कमर्स को लेकर आए हैं। और अगर इसका ट्रेलर आप देखेंगे जो कि कल रिलीज हुआ है, इसका ट्रेलर देखने में भी आपको सेम वाइब आएगी कि सेम प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग है एंड सेम काइंड ऑफ पंचेस, सेम काइंड ऑफ दोस्ती, सेम काइंड ऑफ प्यार। सो आप भी एक बार देखो और मुझे बताओ, दूसरी बार नहीं, पहली बार अगर देख लिया हो तो दूसरी बार नहीं बैठी, नहीं बात है ना, कोई बात नहीं। इस मूवी का नाम भी नहीं बैठा, पहला प्यार दूसरी बार, कोई नहीं। आप देख के बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। मुझे तो एग्जैक्टली सेम लगा, तो मुझे ये लगेगा कि मैं वही मूवीज को दोबारा देख रहा हूं। बाकी आप बताना। दिस इज मिर्ची, इट्स आउट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: दिस अक्टूबर विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स लाइक जयश्री, स्पर्श शाह, नीनी आयरिस एंड डांस अकेडमीज लाइक बॉली मूव्स, शिवालिक, तारा आर्ट अकेडमी. एंजॉय फूड, गरबा एंड वन ऑफ अ काइंड फायरवर्क्स ऑन अक्टूबर 3rd एट कैनेडी पार्क, सेयरविल, फ्रॉम 3 to 9 PM. एंट्री एंड पार्किंग इज फ्री.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
8: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
9: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
8: Wait, they can see us on Sunday?
9: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
11: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
12: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
11: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
13: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
14: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
13: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
15: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
16: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
17: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
18: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
19: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: रिसेंटली ओटीटी पर एक सीरीज आई थी जिसका नाम है मुसाफिर कैफे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्ड इट आल्सो। और अगर आप भी मोस्ट ऑफ द पीपल हो देन कांग्रेचुलेशंस, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। इनफैक्ट अगर आपको पहाड़ पसंद है तो आपके लिए डबल अच्छी खबर है। विक्रांत मेसी जो कि इस सीरीज में लीड एक्टर थे, उन्होंने ये अनाउंस करा कुछ टाइम पहले कि वो खुद के मुसाफिर कैफेज खोल रहे हैं। यस दिस इज ट्रू। ये कैफेज एक हिमाचल में होगा, एक उत्तराखंड में होगा, दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं ऑलरेडी। ये प्रोजेक्ट जो है वो उनके खुद की प्रोडक्शन कंपनी होममेड स्टोरी से टाइड अप है। ये कैफेज का जो लुक होगा वो रिक्रिएट करेगा एग्जैक्टली वही जो आपने सीरीज में देखा, रस्टिक सा, कोजी सा, एकदम फिक्शनल जैसे कैफे हमने देखा था। यहाँ पे हर लोकेशन में यानी कि इन दोनों कैफेज में 20 रूम्स ईच होंगे जहां पे आर्टिस्ट आए, रहें, जो भी उनका काम करना है करें। बेसिकली अगर आप वो स्लो वेकेशन पसंद करते हो ना कि पहाड़ों में जाएं, कुछ दिन रह कर आएं, वहीं से काम कर लेंगे, देन दिस इज द वन फॉर यू। एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये तो आई थिंक सबसे पहले जो लोग एक्सप्लोर करेंगे उनमें से मैं भी होने वाला हूँ, बट आई वुड लव इट। इनफैक्ट यू शुड ऑल्सो गो। बाकी अब कुछ बढ़िया से गाने सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची। मेरा नाम क्रिश है, इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
9: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए।
10: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
8: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
11: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
8: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
11: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
8: Releasing nationwide by Zee Studios.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: Have you ever felt कि आपको आपके काम के प्रेशर की वजह से आपकी करेंट एज ऐसी लगने लगी है कि बहुत ज्यादा हो गई है? बेसिकली यू आर नॉट फीलिंग जैसा आपको फील करना चाहिए एट दिस एज। ऐसा आप ही के साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर राइट नाउ। और ऐसा कई बार ये भी होता है कि आपको जितना प्रेशर लेना चाहिए उससे ज्यादा आपके आसपास के लोग आपको प्रेशर दे देते हैं, कर भाई कर वरना कैसे जिएगा ये जीवन। लेकिन एक महिला जिन्होंने इंस्पायर कर दिया होगा काफी सारे लोगों को, 30 ईयर ओल्ड ये महिला यूके में रहती है। एक हाई पेइंग करियर था इनका एज अ क्रिमिनल लॉयर। शी यूज टू अर्न अ लॉट एंड शी जस्ट लेफ्ट हर जॉब डॉग्स को वॉक कराने के लिए। नाउ शी अर्न्स 50,000 रुपीज इंडियन करेंसी के हिसाब से पर डे एंड शी इज वेरी हैप्पी। शी सेज कि अब मुझे लगता है कि मैं 30 साल की हूं, अदरवाइज मुझे लग रहा था मैं बहुत ज्यादा ईयर्स की हूं। भाई ये सब पढ़ने के बाद मैंने अपने डॉग की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, हम दोनों की आंखें मिली और फिर वो मुस्कुरा कर चला गया। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि डॉग्स भी मुस्कुरा सकते हैं अगर उनको सही में कोई चीज इंटरेस्टिंग लगे तो। उसको मेरा दुख इंटरेस्टिंग लगा यार, मैं भी कोशिश करूंगा। आई मीन वी कैन डू इट। अगर हमें उतना मटेरियलिज्म नहीं चाहिए ना तो हम भी अपनी जॉब छोड़ सकते हैं या नहीं, सोचना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा। अगर आपको कुछ बात करनी है इस बारे में देन इंस्टाग्राम पर हूं मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। आज करते हैं बात, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।
8: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची।

0: की प्यास है।
1: मिस्ट्री थ्रिलर्स एक ऐसा जॉनरा है जो मोस्ट ऑफ द लोग पसंद करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के पांच का पंच में पांच ऐसी मिस्टीरियस थ्रिलर मूवीज जो देख के मजा आ जाए, बिकॉज एक्चुअली बॉलीवुड इज गुड एट इट। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 5 आती है तलाश, द आंसर लाइज विद इन। 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग आमिर खान एंड करीना कपूर खान, डायरेक्टेड बाय रीमा कागती, जिसमें इंस्पेक्टर शेखावत और उनकी वाइफ के बेटे की डेथ हो चुकी है। वाइफ इज स्ट्रगलिंग जबकि इंस्पेक्टर खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है एक एक्टर की मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने में। मूवी का एंड इतना अनएक्सपेक्टेड है कि किसी ने भी सोचा ही नहीं था, एंड हेंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज शोन बाय बॉलीवुड। सेकेंड यानी कि फोर्थ नंबर पर आती है तलवार मूवी, 2015 में आई, स्टारिंग इरफान खान, डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, बेस्ड ऑन द इन्फेमस डबल मर्डर केस ऑफ नोएडा। इस मूवी ने एग्जैक्टली वही दिखाया जो हुआ था, यानी एंड में केस आज तक अनसॉल्व्ड है, एनहेंस इस केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन अनसॉल्व्ड क्यों है ये आपको मूवी देखकर समझ में आता है, प्लस हु डजंट वांट टू वॉच अ गुड इरफान खान मूवी एनीवेज यार, सो गो एंड वॉच इट इफ You have not watched it yet. इसके अलावा बाकी की तीन मूवीज गानों के उस पार आ रही हैं। इसके बीच में अगर आप भी कुछ मिस्ट्री थ्रिलर्स बताना चाहते हो बॉलीवुड में या गेस करना चाहते हो अगली थ्री मूवीज, then tell me Instagram पर मिर्ची क्रिश KRISH। This is मिर्ची, it's all.

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
2: तो सविता बोल रही हूँ।
3: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं, उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
2: क्या परेशानी है?
3: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता
2: है। तो वो तो भरता ही है।
3: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
2: अच्छा,
3: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
2: हाँ हाँ।
3: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
2: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
3: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
2: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
3: नहीं,
2: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
3: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
2: अच्छा।
3: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
2: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
3: हाँ, क्या समझ रही
2: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
3: डॉक्टर सविता।
2: हाँ जी,
4: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही हूँ। देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
2: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
4: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
9: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
8: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
12: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
13: ने बेटे के लिए justice चाहिए।
14: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
12: Drishyam: The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Ahlawat and many others.
15: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
12: The end we've been waiting for. Drishyam: The Conclusion in cinema 2nd October.
15: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
12: Released by Zee Studios nationwide.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

तो चलो आगे बढ़ते हैं. आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बनाई हुई मिस्ट्री थ्रिलर्स के बारे में इन टुडेज पांच का पंच. मिर्ची सुन रहा आप, मेरा नाम क्रिश है. अभी तक इस लिस्ट में दो मूवीज के बारे में आपको बता चुका हूँ. नंबर पांच पर थी तलाश द आंसर लाइज विद इन और फोर्थ पर थी तलवार 2015 में आई इरफान खान मूवी. अब आते हैं नंबर थ्री पर कहानी 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग विद्या बालन डायरेक्टेड बाय सुजॉय घोष जिसमें विद्या बालन प्लेड अ प्रेग्नेंट वुमन का रोल जो लंदन से कोलकाता अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढने जाती है. सब जगह डेड एंड दिखता है लेकिन एट द एंड क्या होता है. देखो वैसे तो ये मूवी काफी लोगों ने देखी हुई है बट फॉर सम पीपल जिन्होंने नहीं देखी होगी आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू सो गो एंड वॉच इट. फिर सेकंड पर आती है माय पर्सनल फेवरेट्स में से एक अंधाधुन 2018 में आई ये मूवी स्टारिंग आयुष्मान खुराना तबू एंड राधिका आप्टे डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन. नाउ यू वांट टू मेक अ मास्टरपीस ऑफ अ मूवी ब्रिंग सम ग्रेट एक्टर्स टुगेदर और फिर कमाल देखो. ये मूवी वही कमाल करती है. आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर विजुअली इम्पेयर्ड पियानो प्लेयर है बट ही कैन एक्चुअली सी और फिर वो एक वेब ऑफ मर्डर में फंसते ही जाते हैं. अगेन इस मूवी को स्पेशल बनाती है इस मूवी की जबरदस्त कास्ट. सो इन केस बाय चांस वंस इन अ रेयर मोमेंट्स आपने नहीं देखी है तो जरूर देखो मजा आएगा. बाकी नंबर वन पे कौन सी मूवी है ये गेस करो. मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे बताओ मिर्ची क्रिश के नाम से. आई एम देयर. दिस इज मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: ये मोह मोह के धागे,
8: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
9: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है।
10: BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th, 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड mongobashi.sca.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
13: आई थिंक मिस्ट्री थ्रिलर्स बॉलीवुड का वो जॉनरा है जो वो काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। इसीलिए आज की पांच का पंच में वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड के एपिक पांच ऐसी मूवीज जो मिस्ट्री थ्रिलर से भरी हुई हैं। एंड हमने अभी तक बात करी पांचवें नंबर पर तलाश दी आंसर लाइज विद इन के बारे में, फोर्थ पर आई तलवार, थर्ड पर कहानी, सेकंड पर अंधाधुन। अब नंबर वन बताने से पहले ऑफकोर्स मेरा एक स्पेशल मेंशन आएगा। ये वो मूवी है जो कि आज की डेट में कल्ट क्लासिक है, गुप्त द हिडन ट्रुथ 1997 में आई, स्टारिंग बॉबी देओल उर्फ लॉर्ड बॉबी एंड काजोल, डायरेक्टेड बाय राजीव राय। साहिल यानी बॉबी देओल का कैरेक्टर अरेस्ट हो गया है फॉर मर्डरिंग हिज स्टेप फादर, बट ही हैज टू प्रूव दैट ही समहाउ इनोसेंट। आगे जो जो होता है और क्लाइमैक्स में जो रिवील होता है वो आई थिंक सबको पता है, बट दिस मूवी इज एज्ड लाइक अ फाइन वाइन बिकॉज अब ये टाइमलेस क्लासिक है, हेंस द स्पेशल मेंशन। एंड अब आते हैं नंबर वन पे, जो कि मुझे पता था काफी लोग गेस कर लेंगे, ऑफकोर्स दृश्यम 2015 की ये मूवी, स्टारिंग अजय देवगन, तब्बू एंड श्रिया सरन, डायरेक्टेड बाय निशिकांत कमत। वैसे तो ये 2013 की मलयालम मूवी दृश्यम का ही रीमेक है, लेकिन एक मूवी कितनी सक्सेसफुल है ये आपको तभी समझ में आ जाता है जब 11 साल बाद भी उसका थर्ड पार्ट आने वाला हो और उसका एक डायलॉग इतने साल बाद भी हम सबको याद हो। यस, हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, हिंस दिस मूवी डिजर्व द फर्स्ट स्पॉट। अगर मैं कोई बहुत बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर मिस कर रहा हूं, देन डू टेल मी अबाउट इट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन एयर। मिर्ची क्रिश के नाम से आई एम ऑन इंस्टाग्राम, जाओ वहां पर बताओ। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।
14: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
4: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
5: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
0: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: सो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड रिसेंटली, जब कैटरीना कैफ को ट्रोल किया गया। काफी सारे सेलिब्रिटीज उनके सपोर्ट में आए, जिसकी शुरुआत खुद भाई ने करी थी अपनी टी शर्ट उतार के इन वन ऑफ बिग बॉसेस एपिसोड्स। मिर्ची सुन रहा, मेरा नाम क्रिश है। लेकिन अभी रिसेंटली समीरा रेड्डी ने एक बड़ा अच्छा पोस्ट डाला एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। उसमें उन्होंने अपनी फोटोज और वीडियोज का मॉन्टाज डाला एंड शी रोट कि बॉडी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी हो, चाहे यंग टीन हो, चाहे एक न्यू मदर हो, आपको अपनी बॉडी से प्यार करना बहुत जरूरी है। ट्रोल्स तो देखो जो भी हैं कहते रहेंगे, उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो क्या ही होगा। यही मैं बोल रहा हूँ, ट्रोल आर सो बैड। और इसी के साथ साथ एक पोस्ट ये भी मैंने देखा एंड आई हैव टू क्रॉस चेक इट कि विवेक ओबरॉय ने भी शायद इसके बारे में बात करी है कि भाई सही कह रहे हैं, ट्रोलिंग एक बुरी चीज है। विवेक ओबरॉय तो अच्छी बात है, सपोर्ट करते हैं भाई का। इट्स रियली गुड टू सी दैट। बट एनी वेज, द पोस्ट वॉज गुड बाय समीरा रेड्डी। हैव यू सीन इट? गो एंड चेक इट आउट। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। इट्स हॉट।
8: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो हेलो, वेलकम। आज मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करूंगी। आज एक ऐसी मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, मेरे मम्मी पापा का बताना है कि ये फिल्म बहुत चली थी उनके जमाने में, एंड लोग ना बार बार इस फिल्म को देखने जा रहे थे। नंबर वन, ये उस टाइम की इनिशियल जो मिस्ट्री फिल्म बन रही थी ना, उनमें से एक थी। नंबर टू, इसमें बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन जो कई सारी और फिल्में कर चुकी थी वो थी, एंड हर नेम वाज साधना। मनोज कुमार थे इसमें। इट वाज डायरेक्टेड बाय राज खोसला, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो भाई इसकी ढेर सारी बातें होंगी, एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे गाने हैं जो लता जी ने गाए हैं, मैं आपको सुनाऊंगी एक एक करके। उसके लिए आपको क्या करना है, सिट बैक एंड रिलैक्स, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो
3: मिस्टर कुमार।
2: या
3: हेलो सर, हाउ आर यू?
2: फाइन फाइन फाइन।
3: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
2: नहीं, आप बता दो।
3: हाँ, तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
2: रिगार्डिंग
3: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
2: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
3: सैटरडे 4 बजे सर, थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
2: हाँ
3: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
2: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
3: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
2: हाँ मिलते हैं।
3: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
2: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
3: मैं ट्यूसडे किसी कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
2: 7 बजे
3: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
2: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
3: सर संडे कितने बजे सर,
2: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे
3: सर। संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
2: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए मुझे।
3: मैं पहले अपना ही निकाल
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: दिस अक्टूबर विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स लाइक जयश्री, स्पर्श शाह, नीनी आयरिस एंड डांस अकेडमीज लाइक बॉली मूव्स, शिवालिक, तारा आर्ट अकेडमी। एंजॉय फूड, गरबा एंड वन ऑफ अ काइंड फायरवर्क्स ऑन अक्टूबर 3rd एट कैनेडी पार्क, सेयरविल, फ्रॉम 3 to 9 PM। एंट्री एंड पार्किंग इज फ्री।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा सुनो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बॉस को कोई आइडिया पसंद नहीं आया हो जो तुमने दिया हो, बट फिर भी उसने तुम्हें इतनी फ्रीडम दी हो कि अच्छा जाओ भाई कर लो अपने मन की, फिर देखते हैं, एंड फिर उसके बाद तुम्हारे आइडिया ने झंडे गाड़ दियो? ओहो, व्हाट अ प्राउड फीलिंग, है ना? पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और ऐसा ही हुआ था एक गोल्डन गाने के साथ फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी जिसकी आज बातें हो रही है। सो ये गाने की पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को 5 बार रिजेक्ट किया प्रोड्यूसर NN सिप्पी साहब ने एंड डायरेक्टर राज खोसला साहब ने, और बार बार इस गाने की कॉम्पोजिशन बना करके ना इसको पेश किया जा रहा था। अब हुआ ये कि मदन मोहन, हु लव्ड द सॉन्ग, वांटेड कि कुछ भी करके ना इस गाने को रख लिया जाए, रिटेन कर लिया जाए। तो उन्होंने 6th कॉम्पोजिशन बनाई। जब राज खोसला ने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम्हें बहुत पसंद है चलो एक बार और बना के दिखा दो, फिर क्या हुआ जब 6th कॉम्पोजिशन सुनी राज खोसला ने, उन्हें तब भी नहीं पसंद आया। But fortunately, because this song had to be a massive hit, उस दिन स्टूडियो में आ गए मनोज कुमार और उन्होंने इस गाने को सुन लिया। मनोज कुमार ने कहा कि दादा ये तो बेहद खूबसूरत गाना है, ये आगे जाकर के जैसे ही रिलीज होगा ना ये गाना मैसिव हिट होगा। इस गाने को रिटेन किया गया एंड उसके बाद रेस्ट वॉज हिस्ट्री। वो कौन सा गाना है? नहीं नहीं नहीं, आपको मेरी आदत तो पता है, मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, थोड़ा सा ना मैं आपको सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ, जिससे आई हैव द श्योरिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स। तो यहीं पे बने रहो श्रेया के साथ ऑन पुरानी जींस, मैं बताऊंगी किस गाने की बात।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Inefficient,
4: very complex,
5: clumsy or
6: confusion ही confusion.
3: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
9: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
10: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
11: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
9: Drishyam The Conclusion starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
12: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
9: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
12: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
9: Releasing nationwide by Zee Studios.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Batting तो काफी सारे करते हैं. विराट एक ही होता है.
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
18: एक ही होता है.
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

थोड़ी देर पहले आपको मैं सस्पेंस में छोड़ के गई थी, अब बताती हूँ पूरी कहानी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। इस फिल्म का एक गाना जो मुझे क्या पूरी दुनिया को बेहद पसंद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेट्रो फैन हैं तो ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में डेफिनेटली होगा। लेकिन इस गाने के पीछे ना एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। ये गाना जब कंपोज हुआ, और कंपोज करने वाले थे मदन मोहन साहब, तो वो ना एनएन सिप्पी जो कि प्रोड्यूसर थे ऑफ वो कौन थी के, एंड राज खोसला डायरेक्टर, उनके पास जब लेकर के गए ना, इन दोनों को ही इस गाने की कॉम्पोजिशन नहीं अच्छी लगी। एंड नॉट जस्ट वन टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल फाइव कॉम्पोजिशंस वर रिजेक्टेड बाय देम। तो फिर ना राज खोसला, जो कि भाई ऑफकोर्स यू नो डायरेक्टर थे, जानते थे कि एक आर्टिस्ट कैसे काम करता है, उन्होंने मदन मोहन से कहा कि अगर तुम्हें ये गाना इतना ही पसंद है, चलो एक और ट्राई कर लो। मदन मोहन ने एक और बार इसको कंपोज किया। एक और बार जब ये सर्व किया गया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, उन दोनों ने इसको फिर से मना कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली क्योंकि ये गाना इतना ह्यूज हिट होना ही होना था, इसकी डेस्टिनी थी एंड ये इतना खूबसूरत था कि उस दिन मनोज कुमार स्टूडियो में आ गए। मनोज कुमार ने जब ये गाना सुना, उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये इतना खूबसूरत गाना है, इसको डेफिनेटली डेफिनेटली रखा जाए इन द फिल्म। फिर इस गाने को लता जी ने गाया और ये गाना आज तक हम सबकी प्लेलिस्ट में है। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू एंड द सॉन्ग इज ओहो। लता जी की आवाज में पूरा गाना आप नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
4: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
3: Wait, they can see us on Sunday?
4: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये स्क्रिप्ट थी किसी और की, बनाने वाला कोई और निकला। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज ना बात हो रही है द मैसिव हिट, द सस्पेंस फिल्म या फिर हॉरर फिल्म कह लो उस जमाने की, वो कौन थी। आपको पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ पूरी कहानी। सो 1950s में गुरुदत्त साहब ने एक फिल्म लॉन्च करी जिसका नाम था रास। इस फिल्म में थे सुनील दत्त साहब, वहीदा रहमान एंड रहमान जी। इट वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय शशि भूषण जी। पता नहीं क्या हुआ कि 10 दिन के बाद गुरुदत्त साहब ने फिल्म की शूटिंग रोक दी। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट पे फिर से काम किया और इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट में सुनील दत्त को नहीं बल्कि खुद को रखा। फिर से इसका नाम रखा गया रास। सो नाउ दिस टाइम वहीदा रहमान थी, रहमान थे और गुरुदत्त साहब थे। 12 रील्स इस स्क्रिप्ट की, यानी फिर इसी फिल्म रास की शूट हो गई। एंड देन अगेन कुछ हुआ कि गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को रोक दिया। एट दैट टाइम द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द नॉवल द वुमन इन व्हाइट। राज खोसला साहब उस समय गुरुदत्त साहब को असिस्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और उन्होंने तभी सोच लिया कि इस अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट को मैं पूरा करूंगा, मैं बनाऊंगा एक फिल्म। सो ये जो आप वो कौन थी कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो स्क्रिप्ट थी ये राज खोसला साहब ने इसी फिल्म से उठाई थी जब वो असिस्ट कर रहे थे गुरुदत्त साहब को, और उन्होंने रास की जगह इसको नाम दिया वो कौन थी। उसके बाद तो भाई बॉक्स ऑफिस पे भीड़ लग गई थी टू वॉच दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ। और श्रेया से अगर वन टू वन बात करनी है, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ मैं बोलती रहती हूँ, दो ऐसी जगह है जहाँ आप भी बोल सकते हो, इस फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव माई हैंडल, वहां पे बता देना जो भी बताना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मनोज कुमार जी को इस फिल्म के लिए लिटरली उनके न्यू बॉर्न बेटे विशाल की दुहाई देनी पड़ी थी डायरेक्टर राज खोसला एंड प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मनोज कुमार उस टाइम के सुपरस्टार, वो जल्दी जल्दी फिल्मों को हाँ ही नहीं कहते थे, यूज टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। सो इस चक्कर में उन्होंने एक दो साल कुछ काम ही नहीं किया। अब ऐसे में भाई प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब चाहते थे कि किसी तरह वो इस मिस्ट्री फिल्म में आ जाए, वो कौन थी में मनोज कुमार जो है वो लीड रोल प्ले कर ले। मनोज कुमार वाज लिटिल स्केप्टिकल, ही वाज डाउटिंग कि मिस्ट्री फिल्म है, थोड़ी सी हॉरर फिल्म है, करूं कि ना करूं। ऐसे में भाई डायरेक्टर राज खोसला ने उनसे कहा कि भाई अभी अभी तुम्हारे घर पे लड़का हुआ है और ये बहुत शगुन की बात है, तुम देखना ये फिल्म करोगे और सुपर डुपर हिट होगी फिल्म। मनोज कुमार ने अपने बेटे विशाल का नाम सुनकर के फिल्म को एक्चुअली हाँ कह दी एंड द फिल्म डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, यानी वो कौन थी की, और इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। कहीं भी मत जाना, कुछ गानों के उस पार ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस फिल्म, सब बताऊंगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
3: तो सविता बोल रही हूँ।
4: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
3: क्या परेशानी है?
4: मैं एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
3: तो वो तो भरता ही है।
4: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
3: अच्छा,
4: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
3: हाँ हाँ।
4: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
3: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
4: प्रॉब्लम मेरे, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
3: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
4: नहीं,
3: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
4: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
3: अच्छा।
4: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
3: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
4: हाँ, क्या समझ रही
3: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
4: डॉक्टर सविता।
3: हाँ जी,
5: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही
3: हूँ।
5: देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
3: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
5: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
3: कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Nine Nights, One Divine Spirit.
10: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
9: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
10: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
9: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
11: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरामा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
13: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
14: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
12: दृश्यम द कंक्लूजन, स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत एंड मेनी अदर्स।
15: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
12: The end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion. In cinema, 2nd October.
15: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
12: Released by Zee Studios nationwide.
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
18: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
19: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344. सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
17: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
13: Oh no!
17: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एवे, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
20: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मदन मोहन साहब अपने खजाने में इस धुन को लेकर के 10 साल तक घूम रहे थे। कुछ डायरेक्टर्स को उन्होंने अप्रोच भी किया, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा नहीं, ये गाना हमारी फिल्म में तो नहीं चलेगा, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है हमारी फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज वी आर टॉकिंग अबाउट वो कौन थी। इंडिया के सिनेमा के इनिशियल ईयर्स में आई एक मिस्ट्री फिल्म, एक सस्पेंस फिल्म, जिसमें थी साधना जी, मनोज कुमार, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, और इस फिल्म के गाने ओहो ऑल कंपोज बाय मदन मोहन साहब। तो अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना नहीं है, ये मास्टरपीस है। लता जी ने इस गाने को गाया था, और ये गाना बहुत टाइम तक, नॉट गाना एक्चुअली, बट ये जो धुन थी, समझ ही गए होंगे आप, ये धुन मदन मोहन साहब ने ना बस कंपोज करके रखी हुई थी। जब वो कुछ डायरेक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फिल्म में तो ऐसा कोई सस्पेंस मिस्ट्री हॉरर वाली सिचुएशन ही नहीं है, तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली 1962 आफ्टर 10 ईयर्स, व्हेन राज खोसला मेड वो कौन थी, इस गाने को अपनी सही जगह मिली। एंड गाना कौन सा है ज़रा गौर फरमाइए। देखो एकदम हॉन्टेड वाली म्यूजिक और साथ में लता जी की आवाज, इट इज नन अदर देन नैना बरसे। कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: ये मोह मोह के धागे।
5: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
6: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है।
7: BBSCA presents Monali Thakur Live, एक exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and mongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
13: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
12: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
14: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: खबर।
1: वहाँ के लोकल्स ये देख करके हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लड़की के मुंह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो उसका ये वाला जो गाना है ना, नैना बरसे रिम झिम, जो लता जी की खूबसूरत आवाज में है, इसके पीछे ना एक और कहानी है। सो होता ये है कि कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है, तो साधना जी को इस पे ऑफकोर्स गाना गाना था, मतलब मुंह चलाना था, लिपसिंग करना था। अब हुआ ये कि लता जी कोई कॉन्सर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, तो वो ये गाना डब नहीं कर पाई। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि ठीक है, तुम लोग कश्मीर में हो ऑलरेडी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने वोकल्स गा करके भेज देता हूँ और बस साधना से लिपसिंग करा लेना। अब क्या हुआ, क्योंकि ये गाना आउटडोर पे शूट हो रहा था, तो कश्मीर के लोकल्स इकट्ठा हो गए देखने के लिए। और शूटिंग इमेजिन इन 1960s, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, इतनी सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं चाहिए होती थी, आराम से लोग शूट वूट कर लेते थे। तो लोकल्स ने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, हीरोइन के मुँह से हीरो जैसी आवाज, यानी लड़की के मुँह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। इट वॉज अ मेजर टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम। फिर खैर जब लता जी वापस आई, उनसे ये गाना डब कराया गया एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी। मैं हूं श्रेया।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

महबूब खान काफी नाराज हुए प्रेम चोपड़ा से, उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज ना वो कौन थी की बात कर रहे हैं। वेल, इंडिया की इनिशियल हॉरर फिल्म्स कह लो, मिस्ट्री फिल्म कह लो, सस्पेंस फिल्म कह लो, उनमें से आती है वो कौन थी। साधना जी थी, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, मनोज कुमार थे इस फिल्म में, एंड भाई महबूब खान चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा जो इस फिल्म में एज विलेन की तरह लॉन्च हुए वो एक हीरो की तरह लॉन्च होते। सो महबूब खान ने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बनाई थी एंड ही वांटेड कि वो प्रेम चोपड़ा को ना एक हीरो की तरह पेश करेंगे अपनी आने वाली फिल्मों में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने ऑलरेडी ये फिल्म कर ली, और उसके बाद ये फिल्म इतनी हिट हुई, प्रेम चोपड़ा एज विलेन इतने हिट हुए कि भाई उसके बाद तो लोगों ने ना उनको नेगेटिव शेड में ही देखना शुरू कर दिया था। तो उनके पास जितने भी ऑफर आते थे वो एज विलेन ही आते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक चलती रहेंगे, श्रेया के साथ हो आप। और हाँ, अगर बैक टू बैक मुझसे इंडिविजुअल बात करनी है तो फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज RJ Shreya with Love, that's RJ SHREY Shreya with Love।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ। सर, ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा, जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना, वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने जब बीप के बाद करिए।
4: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
5: अरे बोल कौन रहा है?
3: सर ये वाला भेज दें। बीप।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
5: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर। बीप।
4: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
5: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला। बीप।
4: अरे बावले हो गए हो क्या?
5: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे? बीप।
4: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
5: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
4: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
5: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए। बीप।
4: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
5: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है। बीप।
4: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
5: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला, दिस वन सर। बीप।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
5: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो। बीप।
4: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
5: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट। सर ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
4: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
4: अबे ओ पागल मार, ये क्या कर रही है? मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
11: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
13: नवरात एकत स्पिरिट
14: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथी लावी रहा छे पिस्काटवे महा
13: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी।
14: तारीख 18मी ना रोज आठम यज्ञ, 19मी नौम यज्ञ अने 25मी शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता, तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
15: This October,
16: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Tera kya hoga kalya?
8: Sardar, maine aapka namak khaya sardar.
19: Ab mirchi kha.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Aap sun rahe hain purani jeans श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी की एक खास बात थी, वो सिर्फ अपनी फिल्म के हीरो नहीं होते थे, वो अपनी फिल्मों के म्यूजिक में भी बैठते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी डायलॉग्स भी लिखते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी स्क्रिप्ट भी लिखते थे। पुरानी जीन्स पे आफो श्रेया के साथ एंड मनोज कुमार यूज टू बी एक्सट्रीमली इन्वॉल्व्ड इन द पिक्चर्स ही यूज टू डू। सो वो कौन थी जब उन्होंने हामी भरी ये फिल्म करने के लिए? इंडिया की इनिशियल ईयर्स की सस्पेंस फिल्म थी, थ्रिल फिल्म थी, ये थ्रिलर कह लो। तो इसमें साधना जी के साथ थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार को कुछ सीन्स, कुछ लिखे हुए सीन्स जो कि ध्रुव चैटर्जी ने लिखे थे, वो पसंद नहीं आए थे। तो आपको पता है उन्होंने खुद ये सीन्स लिखे, रीराइट के, एंड दे वर रियली अप्रिशिएटेड। पुरानी जीन्स पे वो कौन थी की बातें विद मी श्रेया। तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
4: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
3: Wait, they can see us on Sunday?
4: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
8: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
9: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
7: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
10: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
7: Releasing nationwide by Zee Studios.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी को इस फिल्म की रियल हीरोइन ताज होटल के बाहर दिखती थी, जो उनको काफी बार डरा चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, वो कौन थी। तो इसमें ना एक डॉफ लेडी की जरूरत होती है। आप ना डायरेक्टर राज खोसला उनको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनको वो मिलते ही नहीं है। तो ऐसे में मनोज कुमार, हु वाज़ आल्सो द एक्टर ऑफ द फिल्म, और उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ द फिल्म रीराइट भी किए थे, उनको याद आया कि जब जब वो ताज होटल के बाहर निकलते हैं ना, तो उन्हें ऐसी ही एक डॉफ बेगर दिखती हैं, जो कि उनको कई बार डरा चुकी हैं। तो बस उन्होंने सजेस्ट किया राज खोसला को, राज खोसला उनको मूवी के सेट पे ले आए, एंड शी वाज एक्चुअली द हीरोइन ऑफ द फिल्म। क्योंकि फिल्म हॉरर थी, तो इनको देख करके स्क्रीन पे ना बहुत लोग डरा करते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
4: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए।
5: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
3: Drishyam The Conclusion starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
3: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Releasing nationwide by Z Studios.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Listener hai main, back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Nasha.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: क्यों मारा? क्यों मारा?
2: क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों मेरे भाई

दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया, ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों, आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana, gabana. Burka, burka. La birba, la burka. Milci, burka.
1: हेलो,
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: मैं एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
2: प्रॉब्लम मेरे, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सविता।
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही बेगात मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
1: अब नविद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नविद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: ओह नो,
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
12: ये मोह मोह के धागे।
13: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
14: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है।
15: BBSCA presents Monali Thakur Live, ek exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and mongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
16: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
17: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
16: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
18: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
19: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
20: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
8: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
21: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
8: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
21: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
8: Released by Zee Studios nationwide. Shyam Shandar, let's do
22: not donkey, have a funky time. कभी नोटिस किया है, कुछ गाने ना सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी. और जैसे ही मिर्जापुर का नाम सुनते हैं ना, दिमाग में सबसे पहले गन्स, बौकाल, पावर गेम्स, रिवेंज, यही सब आता है. लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गाना है जो बिल्कुल उल्टा एहसास देता है. जी हाँ, वारू फॉरएवर. और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गाना ओरिजिनल यानी वारू उसका नया वर्जन है, जो फैंस के बीच इतना ऑर्गेनिकली पॉपुलर हो गया कि यार मेकर्स ने उसे फिल्म के लिए दोबारा लाया. और इस बार श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज ने उस इमोशन को और भी गहरा बना दिया था. कंपोजर आनंद भास्कर और लिरिसिस्ट जिनी दीवान ने उसी रूह को एक नई कहानी के साथ फिर से जिंदा किया था. और शायद यही वो बात है कि यार वारू फॉरएवर ना इतना अलग लगता है लेकिन फिर भी अपना सा लगता है, क्योंकि मिर्जापुर की इतनी वॉयलेंट दुनिया में भी ये गाना याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है. तो कभी कभी सबसे लाउड कहानियों के बीच सबसे खामोश गाने ही दिल में घर बना देते हैं. तो चलिए, अगर आज का दिन थोड़ा स्लो है या बस 2 मिनट की सुकून की तलाश है तो ये गाना शायद आपकी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बना ले. सुनते हैं वारू फॉरएवर ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
8: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
9: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
8: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
10: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
11: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
10: Wait, they can see us on Sunday?
11: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
14: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes. Comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
17: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
19: बॉलीवुड कैरेक्टर से ना लोगों की पर्सनालिटी पता चलती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और किसी को ना गीत की एनर्जी पसंद है, तो किसी को बनी का एडवेंचर, तो किसी को पो का एटीट्यूड। तो आज ना एक स्नैक पर्सनालिटी टेस्ट भी कर ही लेते हैं। मतलब अगर आपको चीजें सिंपल और क्लासिक पसंद है तो यू आर प्रोबेबली नेचुरल। थोड़ा शार्प सोफिस्टिकेटेड एटीट्यूड है तो ब्लैक पेपर, और अगर लाइफ में थोड़ा ड्रामा, थोड़ी हीट और थोड़ा ब्रिंग इट ऑन चाहिए तो रेड चिली गैंग। I can see you. मतलब मूवी चल रही हो, फ्रेंड्स के साथ बॉलीवुड गॉसिप हो, या जर्सी की ड्राइव थोड़ी लंबी, एक क्रंची स्नैक का पैकेट खुलता है और हाथ ऑटोमेटिकली उसमें वापस चलना ही जाता है। और इन तीनों मूड्स के लिए दीप चिप्स, नेचुरल ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेवर्स, यानी अपना कैरेक्टर चूज कीजिए एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट तो कंप्लीट हो गई, अब देखते हैं अगला बॉलीवुड गाना आपके कैरेक्टर से मैच करता है या नहीं। ऑन योर मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
6: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
7: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
8: Har pyari bride ka

0: 1080 69।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
5: गानों की ना एक अलग ही दुविधा है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ना गाना याद रह जाता है लेकिन फिल्म ही याद नहीं रहती, और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में या रेडियो पर एक गाना बजता है और दिमाग तुरंत बोलता है कि अरे वाह क्या गाना है, पर अगला सवाल शुरू हो जाता है कि ये किस मूवी का गाना था, और बस फिर पूरा बॉलीवुड क्विज शुरू हो जाता है। कोई एक्टर याद आ जाता है, कभी कोई सीन याद आ जाता है, कोई कॉस्ट्यूम तक याद आ जाता है, लेकिन मूवी का नाम लास्ट में याद आता है। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने पावरफुल होते हैं कि फिल्म भले ही भूल जाओ लेकिन गाने नहीं भूलते। वैसे आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड गाना है जिसका ट्यून आपको अच्छे से याद है लेकिन मूवी का नाम याद करने में सदियां लग जाती है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि IDDHI। और चलिए देखते हैं अगला गाना आप कौन सी मूवी का है ये पहचान पाते हो या नहीं। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक सूटकेस में कितने सपने फिट हो सकते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई पढ़ने या करियर के लिए दूसरे देश जाता है ना, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं लेकिन उम्मीदें ज़्यादा होती है। हर फ्लाइट एक नई बिगनिंग लेकर उड़ती है। और अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीज़ा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर I-20 इश्यू की जा सकती है। एक्सप्लोर कीजिए सर्जिकल, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीशिया और न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के AAS डिग्री प्रोग्राम्स। और साथ ही रेप्यूटेड मेडिकल सेंटर्स में अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जो देते हैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज ही विजिट कीजिए aimseducation.edu। एम्स एजुकेशन, स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड। और चलिए, सपनों की बातें हो रही है तो सपनों से भरा ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La viva la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: Mr. Kumar.
2: Yeah.
3: Hello, sir. How are you?
2: Fine.
3: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
2: नहीं, आप
3: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
2: रिगार्डिंग
3: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
2: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
3: सैटरडे 4 बजे सर, थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
2: हाँ
3: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
2: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
3: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
2: हाँ मिलते हैं।
3: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
2: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
3: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
2: 7 बजे
3: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी।
2: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
3: सर संडे कितने बजे,
2: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
3: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो।
2: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए मुझे।
3: मैं पहले अपने ही निकाल
0: लूं। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: 9 nights, 1 divine spirit.
11: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
10: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
11: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Naam Yagya on the 19th, and Sharat Purnima Garba on the 25th.
10: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
12: This festive season, Kalal of New Jersey presents 2 mesmerizing nights.
13: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
12: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Islington, New Jersey.
16: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
17: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
16: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
18: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
19: तेरा क्या होगा कालिया?
20: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दोस्तों, हर दिन न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर इकोनॉमी की इतनी बातें होती है ना कि कभी कभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतने सारे सोर्सेस से अपडेट्स इतने सारे मिलते रहते हैं, लेकिन हर अपडेट पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। जरूरी तो ये समझना है कि वॉट रियली मैटर्स टू अस। तो अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स में घर भी शामिल है तो आज की बात आपके काम जरूर आ सकती है, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स और इतने सारे ऊपर नीचे जो मार्केट के हो रहे हैं, व्हाट दैट रियली मींस फॉर होम बायर, ये बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज गिविंग यू मॉर्गेज रेट अपडेट्स ड्यूरिंग दिस ड्राइव टाइम। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट बाइंग अ होम इन दिस ट्राई स्टेट एरिया, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस आई हियर इज व्हाट मॉर्गेज प्रोडक्ट इज राइट फॉर मी। द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, योर फाइनेंसेस एंड द प्रॉपर्टी यू आर बाइंग। Let's start with conventional mortgage. This is a popular option for buyers with solid credit and stable income, and it can work with relatively low down payments. Then there's an FHA, which can be helpful for home buyers who may have a lower down payment or need more flexible qualification guidelines. And here in New Jersey, where home price can be substantial, we also have jumbo loans for loan amounts above the conventional confirming limits, that is $845,000. So friends, buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 7.125%. 20-year fixed mortgage rate, 7%. 15-year fixed mortgage rate, 6.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Well, friends, my biggest advice is don't choose a mortgage based only on the interest rate. Look at the complete picture: monthly payment, cash required to close, mortgage insurance fees, and how long can you expect to own the home. As a mortgage professional, my job is to help you understand the options and find the structure that fits your situation. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
5: मुझे बेटे के लिए justice चाहिए.
6: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
4: Drishyam, the conclusion. Starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others.
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
4: The end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion. In cinema, 2nd October.
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
4: Released by Zee Studios nationwide.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए. इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin।
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज. इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ.
15: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ. टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा. कॉल 954-918-8589.
16: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
17: अरे माँ अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
16: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट.
18: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
19: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा.
20: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
21: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
22: Sham Shanda. Let's go not donkey, have a funky time.
0: हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों. कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों. मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और तुम मेरे ना हुए ना सही. ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता झूम भी उठ जाता है. मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है रश्मिका मदाना के थ्रू एक आग भी है और एक आंसू भी. सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ. मजे की बात तो यह है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ 1 टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था. वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा टेल मी ऑन इंस्टेंट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI. और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: This October,
8: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Molly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, Garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9.

जी सदी। और जी हाँ, ये एक जिंदगी काफी नहीं है। मोनिका ओ माय डार्लिंग का ये ट्रैक सुनते ही यार ऐसा लगता है जैसे आशा भोसले का एरा वापस आ चुका है। बेस लाइन रेट्रो, लिरिक्स रेबेलियस और वॉइस में फुल ऑन ड्रामा। वैसे ये गाना गाया है अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तवा ने, और इस गाने में वो सास डाला है जो कहता है कि यार प्यार गया तो क्या हुआ, मैं तो स्टिल मैं हूँ। वैसे डायरेक्टर वसंत बाला ने सेट पर बोला था कि ठीक जैसे हेलन डांस करती है वैसे ही हुमा कुरैशी को डांस करना है, और कहीं ना कहीं हुमा कुरैशी ने भी अपने ग्लिटरी ड्रेस और ग्लिटरी अवतार में हेलन को मैच करने की कोशिश की है। वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए आपके लिए मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कुछ खास गाने और उनके कुछ खास किस्से। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और गेरुआ ये गाना सुनते ही ना एक अलग ही ड्रीमी सी फीलिंग आ जाती है। पर एक बहुत ही अमेजिंग सा फन फैक्ट है इस गाने का कि यार अरिजीत सिंह ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया था तो बस एक टेक में रिकॉर्ड किया था। अब ऐसे तो कई सारे गाने हैं जो एक टेक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ये गाना उसमें भी खास है क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना बस डायरेक्टर ने बोल दिया था कि वार्म अप के लिए एक रफ टेक ले लो, मतलब एक रिहर्सल टेक ले लो। और जब वो रफ टेक अरिजीत सिंह ने गाया तो वही बन गया फाइनल मास्टर टेक। और टीम ने कहा कि यार ये आवाज ही इतनी अमेजिंग है, इतना एफर्टलेस डेप्थ है इस आवाज में, इस टेक में, कि इसी टेक को फाइनल करते हैं। तो बस फाइनल टेक कभी किया ही नहीं और यही टेक फाइनल बन चुका था। तो मतलब बोलते हैं ना कभी कभी प्रैक्टिस भी परफेक्शन बन जाती है, तो अरिजीत जी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। और शायद इसलिए ही इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे आपका फेवरेट अरिजीत सिंह का गाना कौन सा, टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं ये वन टेक सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, गेरुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए। बीप।
2: अरे बोल कौन रहा है?
4: अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं
2: लास्ट। ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
4: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट। सर ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलन।
13: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
14: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
13: Wait, they can see us on Sunday?
14: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
18: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
17: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
19: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
20: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
21: बेटे के लिए justice चाहिए.
22: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
20: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
23: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
20: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
23: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
20: Released by Zee Studios nationwide.
24: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं. विराट एक ही होता है.
25: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
24: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
26: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
24: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
27: एक ही होता है.
24: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है एक ऐसे एल्बम की यार जिसके हर एक गाने ने ना दिल को छू लिया था। जी हाँ, मतलब कभी कोई पल ऐसा आता है जहां वक्त रुक सा जाता है और बस दिल की धड़कने चल रही होती है। मेट्रो इन दिनों का इन दिनों टाइटल ट्रैक वही गाना है जो यार टर्न पाइक या गार्डन स्टेट पार्कवे के ट्रैफिक में भी ना सुकून दिला दे। तो इस गाने की तैयारी के लिए प्रीतम ने सोहम से बस इतना कहा था कि ऐसा गाना कि लगे कि सूरज की रोशनी ना पर्दों के बीच में से आ रही हो। और आपको पता है ये जो गाना है इसका जो इंट्रो गिटार रिफ है मुंबई के एक बालकनी पे मॉनसून के दौरान रिकॉर्ड हुआ था ताकि रेन की ना थोड़ी नेचुरल सी साउंड आए और एक बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस बने, और शायद इसीलिए ये गाना इतना एयरी और सूना सूना सा लगता है। वैसे आपके इन दिनों में वो कौन सा मोमेंट है जब जिंदगी थोड़ी रुक सी गई है ऐसा लगता है? डीएम मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस पल को थोड़ा रोक लेते हैं विद द नेक्स्ट सॉन्ग इन दिनों फ्रॉम मेट्रो इन दिनों राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
3: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
2: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
5: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
11: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
12: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
11: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
13: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है.
2: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है. BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेक्युलर कॉन्सर्ट. अक्टूबर 10th, 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम. टिकट्स ऑन सुलेखा एंड मोंगोबाशी SCA.org. कॉन्टैक्ट 6503055624.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
14: अब मिर्ची खा.
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
17: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम.
18: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि. और कुछ बातें होती है ना जो जुबान तक आते आते रुक सी जाती है, पर दिल उन्हें कभी छोड़ नहीं पाता. इन दिनों मेट्रो का बातें कुछ अनकही सी एक ऐसा ही गाना है. ये वो गाना है जहाँ हर नोट ऐसे गिरता है ना कि जैसे लगता है कोई पुरानी डायरी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पन्ना खुल गया हो. और एक सुंदर सी कहानी इस गाने से जुड़ी है. मतलब इस गाने में जो हमिंग है, एक बहुत ही हल्की सी हमिंग है जो प्रीतम ने बैकग्राउंड में डाली थी, वो दरअसल गाने के कंपोजिशन में कभी थी ही नहीं. वो एक्चुअली ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन थी. और एक पल में ही वो बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग इस गाने में वो जुड़ गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट हमिंग. और शायद इसीलिए ये गाना सुनते ही ऐसा महसूस होता है जैसे मेमोरीज खुद चलकर अपने पास आ रही हो. और इस गाने में एक बहुत ही खूबसूरत सी नरमी, एक बहुत ही शराफत और एक नज़ाकत है जो इस शाम को भी और खूबसूरत बना देती. तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ. वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो कौन सी ऐसी अनकही बात है जो आपके दिल में रह गई है और कभी किसी से आपने कही नहीं. टेल मी ऑन Instagram मिर्ची सिद्धि SIDDHI. और आज की ये जो शाम है उन्हीं अनकही लम्हों के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस। Only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग

0: ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: श्याम शारदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
7: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सेलिब्रेशंस बिल्कुल छोटी छोटी जीतों में छुपे होते हैं। जी हाँ, मतलब शाम के इस वक्त में जब न्यू जर्सी की ट्रेन एकदम स्लो हो जाती है और लोग घर की तरफ बढ़ उठते हैं, कर सलाम इन दिनों मेट्रो का एक परफेक्ट रिमाइंडर लगता है कि लाइफ जितनी भी भाग दौड़ वाली हो उसमें छोटी छोटी विक्ट्रीज का सलाम जरूर बनता है। और इस गाने की मेलेडी एक कैजुअल जैम से निकली थी, मतलब म्यूजिशियंस ने ना टिन क्रेट्स और एम्प्टी कैन से बीट से एक पूरे सिटी हार्टबीट की वाइब क्रिएट की थी। और इसीलिए जब भी ये गाना बजता है ना, लगता है कि यार शहर खुद आपको सलाम कर रहा हो। तो दोस्तों मुझे भी बताइए कि आज की आपकी वो छोटी सी जीत क्या थी, एक ट्रैफिक लाइट का पेशेंस या एक बॉस को दिया हुआ सही जवाब। कुछ भी हो, सेंड मी योर सलाम मोमेंट ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए न्यू जर्सी के स्पिरिट को सलाम करते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल टूटने का दर्द कम तो नहीं करते, बस उस दर्द को ना थोड़ी नजाकत से पकड़ लेते हैं। ओ मेरी जान की आवाज में मेट्रो का एक ऐसा ही गाना था जिसमें हल्की सी वॉर्म्थ भी है, हल्का सा दर्द भी है और एक सुकून है जो यार शाम को ना बहुत ही खूबसूरत बना देता है। और कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो बिल्कुल भी शांत रखा गया था। मतलब वैसे तो यार प्लेबैक सिंगिंग में स्टूडियो जनरली शांति होता है, लेकिन ये स्टूडियो थोड़ा ज़्यादा खास था। नो एक्स्ट्रा लाइट्स, नो बिग सेटअप, बस के हेडफोन्स और एक इमोशनल सा साइलेंस। तभी तो यार शायद इस गाने में एक ऐसी स्टिलनेस है जिससे ना हार्ट ब्रेक भी खूबसूरत सा लगता है। तो अगर इस गाने को आपने दिल से महसूस किया है के की आवाज़ में, तो आज की शाम में, न्यू जर्सी की इस खूबसूरत शाम में, ये ट्रैक प्ले करते हैं आपके उस खास मेरी जान के लिए। तो चलिए वैसे आप भी बता सकते हो ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो। टेल मी ऑन इंस्टा मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके लिए खूबसूरत है। फिलहाल तो सुनते हैं के की आवाज़ में ओ मेरी जान, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
2: हेलो,
3: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
2: तो सविता बोल रही हूँ।
3: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं, उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
2: क्या परेशानी है?
3: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
2: तो वो तो भरता ही है।
3: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
2: अच्छा,
3: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
2: हाँ हाँ।
3: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
2: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: प्रॉब्लम मेरे, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
2: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
3: नहीं,
2: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
3: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
2: अच्छा।
3: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
2: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
3: हाँ, क्या समझ रही
2: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज़, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
3: डॉक्टर सविता।
2: हाँ जी,
4: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरे ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
2: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
4: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Inefficient.
9: Very complex.
10: Clumsy.
11: Confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
14: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
14: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
17: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
18: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
13: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
19: This October,
12: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris, and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba, and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville, from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
0: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हर शहर के बीच में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो यार खास बन जाते हैं। लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते, वही एक ऐसा गाना है जिसमें यार पूरे मेट्रो सिटी की हार्ट बीट बसी हुई है। मतलब ये मेलेडी एक कैजुअल सी लेट नाइट जैम सी बनी है, बिना स्क्रिप्ट, बिना प्लानिंग, बस दोस्ती और म्यूजिक की वॉर्म्थ। तो शाम के वक्त जब न्यूजर्सी में अपने दोस्तों के साथ बैठो ना, तो बस गिटार या कोई भी एक टिन के डब्बे के साथ भी एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जब दिल से निकलता है तो वही गाना होता है यार लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते। और इस गाने ने ना कुछ ऐसी ही फील दी है, मतलब ऐसा गाना है जो अक्सर हम सोचेंगे कि यार दोस्तों के साथ ही गाना चाहिए। तो बस आज लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते ये गाना रिक्वेस्टेड है बाय आदित्य मदान, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में, अपने दोस्तों के लिए। तो दोस्तों लाइफ इन अ मेट्रो का ऐसा कौन सा गाना है जो आपके लिए खास है, मुझे जरूर बताना, वो बजाऊंगी मैं यहाँ। और अगर कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो वो भी जरूर बताना। फिलहाल बजाते हैं आदित्य की रिक्वेस्ट पर रिश्ते फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Honey, it's 11 PM, our bedtime. Where are you?
3: I am not going to bed with you ever again.
2: But why? What did I do?
3: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
2: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
3: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
2: Yes, come soon. Honey!
3: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
4: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर. कॉल 732-366-6777.
7: No!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
13: Listener MA, back to back gana sunega.
14: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
15: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
16: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और कभी कभी अलविदा ना ज्यादा शोर नहीं मचाते, बस एक गीत बनकर दिल में उतर जाते हैं. लाइफ इन अ मेट्रो का अलविदा केके की आवाज में एक ऐसा ही गाना है, क्योंकि उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई है कि लगता है जैसे उन्होंने अपने दिल के अंदर की खामोशी को गाने में घुमा दिया हो. कहा जाता है कि अलविदा का जब फाइनल टेक हुआ था वो रात को एक ऐसे लम्हे में रिकॉर्ड हुआ था जब स्टूडियो में ना सिर्फ एक फेंट सी स्मूथ सी लाइट थी, जैसे कि गाना खुद डार्कनेस को भी सूट कर रहा हो. गाना सुनते ही एक अजीब सी पुरानी याद बहुत ही खामोशी से सामने आ जाती है, एक ऐसा गुड बाय जो कभी बोला या शायद कभी बोला ही ना गया हो. कभी कभी लगता है यार, केके ने जब ये गाना अलविदा गाया था तो शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि किसी एक दिन वो भी हमें बिना बोले अलविदा कह जाएंगे. तो चलिए आज केके की ही याद में उन्हीं के एक बहुत ही बड़े फैन रमा, जो कि रहती है एडिसन में, उनकी रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, ब्यूटिफुल एल्बम विच ऑल द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. तो दोस्तों, आपका भी कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो मुझे जरूर बताना ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI. और फिलहाल बजाते हैं रमा की रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, केके की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold.
0: Da Silsila. Mirchi Mornings with Priscilla.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.

0: क्वालिटी बेस्ट प्राइस। नवरात एक स्पिरिट
1: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
0: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी।
1: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ 19 नौम यज्ञ 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: This hour is brought to you by Raj Jewels.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

शमशान लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।